आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

0: पजामा।
1: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

0: दास मॉर्निंग, दास मॉर्निंग आरजे तनीशा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदा दास मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड इट टुडे।

0: Denisha. Denisha. Denisha. Benteha in the voice of Atif Aslam, Sunidhi Chauhan from the movie Race 2, only on Radio 106.3 FM. Denisha ki ji aapke saath bindaas mornings lekar a very good morning meri jaan. Thursday ka din hai, August 13th. खुश तो बहुत होगे तुम, क्योंकि मैं भी बहुत खुश हूँ और उसी खुशी को सेलिब्रेट करेंगे आज पूरे चार घंटे. ढेर सारी बातें करनी है, यू नो, देश की, दुनिया की, आपकी, मेरी. हाँ जी, इम्पोर्टेंट है. वीकेंड की भी तो करनी है और साथ में कमाल गाने. ओए होए होए.
1: तू है तो दिल धड़कता है, तू है तो सांस आती.
0: बहुत ही सुंदर और मतलब सुकून भरा गाना है. नहीं,
2: देखने में कैसी सीधी सादी लगती है, बोलती के वो तो कुछ नहीं समझती, अंदर से कितनी तेज है.
0: ये मेरी बात हो रही है क्या? नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं है. राइट, दिस ब्यूटीफुल ट्रैक इज ऑल्सो कमिंग. अभी म्यूजिक सुना दिए, आप सोचो कौन सा गाना है.
3: सरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगा.
0: एंड जी, ऑल दीज अमेजिंग ट्रैक्स आर लाइंड अप फॉर यू इन दिस आवर. और पहले आपने क्या करना है आपको पता है ना? 3311063 पर मैसेज करना है, अपने हाल चाल बताने हैं. बताइए मुझे, कैसे हैं आप? सब ठीक चल रहा है ना जीवन में? और कल का दिन कैसा रहा? वीकेंड का क्या प्लान है? इस वक्त क्या कर रहे हैं? ऑलरेडी काम के लिए निकल चुके हैं, रेडी हो रहे हैं, बस अभी उठे हैं? व्हाट ऑल इज गोइंग ऑन? लेट मी नो 3311063 पर. एक प्यार सा गुड मॉर्निंग मैसेज भेज दो यार.

0: नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन।
1: हाय, दिस इज विपाशा बासु।
2: हाय, आई एम राजकुमार राव।
3: हाय, मैं हूँ प्रियंका चोपड़ा।
4: हाय, दिस इज दिशा पार्डी।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो 106.3 FM।

0: सुनिए हर सुबह 6 से 10 आरजे तनीषा को बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड इट टुडे।

0: Tanisha.
1: Mr. and Mrs. Mahi se Bariyar Sagar ki awaz mein tu hai to beautiful track only on Radio 106.3 FM. Tanisha aapke saath bin 10 mornings chal rahe hain yahan par and Nazri ji ka message aaya hai. Before you waste it on anger, resentment, spite or envy, think of how precious and irreplaceable your time is today. Good morning. बहुत सही बात है. हम आधे से ज्यादा वक्त तो ना किसी चीज पे गुस्सा है तो उसके ऊपर सोचते रहते हैं और वो टाइम वेस्ट हो गया. ठीक है. और resentment, spite और envy तो any which ways होनी ही नहीं चाहिए. Because what all you have is what all you need right now. So ये वाले thoughts तो चाहिए नहीं भाई. साथ में संतु जी का message आया है. Good morning. और message ऊपर चला गया है. रुको मुझे scroll down करने दो बाबा. Hello, good morning. Wishing you all a wonderful day filled with positivity and joy. Smile awesomely and make every moment count. Jio Bindas, Harpal Sandhu from the Consecrate. Good morning, ji. Wishing you the same. और अबरार जी का भी मैसेज आया है. उन्होंने एक फूल के साथ थर्सडे मॉर्निंग हमें विश करी है. A very good morning to you too. शशिकांत पाटिल जी कहते हैं, Life is full of uncertainties. But there will always be a sunrise after every sunset. Indeed, ups and downs aate rehte. Agar downs aaye to ups bhi aayenge. Aur ups aaye hain to unfortunately downs bhi aayenge. You know, balance karke chalna zaruri hota hai. Because sirf ups hi rahe na, to hum bore ho jayenge. Wo hame monotonous aur normal lagne lagega. So that is also not okay. Aur Bilal ji ka bhi good morning aa gaya aur happy wala weekend wish kiya hai. Wishing you the same. Aur weekend ki jo khushi hai wo alag level pe hai, to isiliye maine bulaya hai DJ wale babu ko. Aaiye saath mein enjoy karte hain. Stay tuned and Jio Bindas. Awesome. Radio Olive par aane wala gana cool song of the hour. Song of the
2: hour. Kya baat hai sir? Kya par ye baat hai?
3: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो. डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो. डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो. गाना चला दो.

0: वजह दूं।
1: यार मुझे 10 GB फ्री मिला मेरे हाला रिचार्ज के साथ।
2: क्या, कैसे?
1: बस रिचार्ज करो और तुम्हें फ्री डेटा या मिनट्स मिलते हैं। कल मुझे 50 फ्री मिनट्स मिले।
2: रोज मिलता है क्या?
1: हाँ रोज मिलता है।
2: मैं भी अपना हाला नंबर रिचार्ज कर रहा हूँ।
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडू ऐप पर। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
3: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
4: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 million रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल। जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड इट टुडे।

0: Tanisha.
1: Tanisha. लंदन पेरिस न्यूयॉर्क मूवी से एलिजा फर्गीवेज में वो देखने में कैसी सीधी साधी लगती, किसी ना किसी का ख्याल तो आया योगा जहन में. यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 एफएम. तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं यहाँ पर. एंड इमरान जी का मैसेज आ गया, द वर्ल्ड गेट्स इट्स मॉर्निंग सन बट आई गेट माई डेली स्पार्क फ्रॉम योर वॉइस. ओए होए होए, हैव अ वंडरफुल शो टुडे एंड हैप्पी वीकेंड. विशिंग यू द सेम. हैव एन अमेजिंग डे टू योर सेल्फ. एंड एक बहुत प्यारा सा कोट मैंने पढ़ा. सो इट इज अ लैटिन फ्रेज बेसिकली एंड इट इज दम विवीमस विवैमस. दम विवीमस विवैमस, जिसका मतलब सिर्फ इतना है, वाइल वी लिव Let us live. जी, so until the time we are here na on this earth, इसको enjoy करने का है. बार बार ये मौका नहीं मिलता है. We are lucky to have this opportunity. So हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह लो. हर दिन को full on enjoy करने की कोशिश करो. छोटी मोटी चीजें होंगी इधर से उधर, बट अब आप उसको लेके बैठे रहोगे. एंड इमेजिन आपने एक पूरा दिन किसी छोटी सी बात पे आपकी किसी से आर्ग्यूमेंट हो गई, ओके, और वो छोटी सी बात को लेकर आप बैठ गए और आपने एक पूरा दिन वेस्ट कर दिया. नॉट ओके. इट इज सच अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी वी हैव गॉट हियर टुडे. सो हर दिन को अच्छे से इंजॉय करना इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है. एंड ऑल्सो टुडे इज श्री देवी जी'स बर्थ एनिवर्सरी एंड दैट्स व्हाट वी आर सेलिब्रेटिंग टुडे. हर घंटे आपको उनका एक खूबसूरत सा गाना सुनने को मिलेगा. फिलहाल भेज रही हूँ सुरेश वाडकर साहब की आवाज में सदमा मूवी से ए जिंदगी गले लगा ले. ये क्या सही टाइम पे गाना है यार, कमाल है. स्टे ट्यून एंड जियो बिंदास.
2: कभी चांदनी फैलाई तो कभी बनी हवा हवाई. बॉलीवुड की फर्स्ट फीमेल सुपरस्टार श्रीदेवी ने जब जब स्क्रीन पर अदा दिखाई, बस वाह वाह ही पाई. आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर सुनते हैं रेडियो ऑलिव पर श्रीदेवी स्पेशल सॉन्ग्स.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार.

0: सब कुछ अनबीटेबल वैल्यू में। तो इस सीजन लुक में भी टॉप अप करो। स्पेक्टेकुलर ऑफर सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए आपके नजदीकी लुलु स्टोर्स में।
1: ओह नो, फिर से स्कूल। अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों? जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है। रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश। अब सिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक। वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल। किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है। तो एक्सक्लूसिव एंट्री चाहिए? प्रोसेस बड़ा सिंपल है। अभी जाओ olive.qa पर बैक टू स्कूल फॉर्म फिल करो और अपना फोन अपने पास रखना, क्योंकि हमारी कॉल कभी भी आ सकती है। स्पॉट्स लिमिटेड है, तो आज ही रजिस्टर करें olive.qa पर। मिलते हैं अबू सिद्रा मॉल में। वेन्यू पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल। अबू सिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन।
2: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट।
1: क्रिएटिव पार्टनर प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव। फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट स्क्रिबल्स गल्फ ऑन इंस्टाग्राम।
3: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning। Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler। Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा।
4: Commercial Bank, your future grows when your savings grows। Save more, dream bigger। Win up to 5 million riyals with Commercial Bank। In association with Naseem Healthcare। No queues, no hassle। Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations। Download it today।

0: अरिजीत सिंह की आवाज में ब्रह्मास्त्र से केसरिया ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम दिनेशा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर एंड पहले मैं ये बजाती हूँ
1: रेडियो ऑलिव प्रेजेंट्स ब्लैक बोर्ड स्टोरीज
0: आई टोल्ड यू ब्लैक बोर्ड स्टोरीज में जो चीजें मैं आपसे पूछ रही हूँ वो भी मुझे भी नई नई ही सीखने को मिलती है ना. यस्टरडे मी सिमरन एंड वन ऑफ आर कॉलीग वी वर टॉकिंग अबाउट समथिंग और कुछ तो डोंकी की बात निकली एंड हम सब ना ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि फीमेल डोंकी को क्या बोलते हैं एंड नोबडी न्यू एंड देन आई गूगल्ड एंड आई वॉज फ्लैबरगास्टेड. सो टुडेज क्वेश्चन इज व्हाट डू वी कॉल अ फीमेल डोंकी. एक फीमेल डोंकी को क्या बोलते हैं. गूगल नहीं करना है, अगर आपको पता है तो बताओ मुझे. अदरवाइज आई विल टेल यू. नहीं तक है, चिल करने का है. बताओ मुझे जल्दी से, मैसेज करो 3311106 पर. एक फीमेल डोंकी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है 3311106 या फिर कॉल कर दो 4444106 पर. जैसा जी का गुड मॉर्निंग आया. गुड मॉर्निंग जी. सेंडिंग

0: बावरा समन, बावरा समन। आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। बिंदास रेडियो ओलिव पे, रेडियो ओलिव पे स्टोरी ऑफ द डे, स्टोरी ऑफ द डे।
1: साउथ की छोटी सी श्री अम्मा से लेकर बॉलीवुड की हवा हवाई तक, हिम्मत वाला की धमाकेदार एंट्री मिस्टर इंडिया वाली अदा, चांदनी का नूर और चालबाज में एक ही पर्दे पर दो अलग जान, पद्मश्री से नवाजी गई, मगर उनका असली अवार्ड था वो प्यार जो हर जनरेशन ने उन्हें दिया। रिमेम्बरिंग सुपरस्टार श्रीदेवी ऑन हर बर्थ एनिवर्सरीज।

0: दास मॉर्निंग, दास मॉर्निंग आज तनीशा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदा।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 million riyals विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड इट टुडे।

जबहरी मैं सेजल से नूरा सिस्टर्स की आवाज में जी वे सोनिया जी, क्या सुंदर गाना है. एंड द फीलिंग ऑफ लॉन्गिंग बट स्टिल यू नो यू स्टे हैप्पी वेर एवर यू आर काइंड ऑफ लव वाला जो एक एक्सप्रेशन है, इतना प्यारी तरीके से उन्होंने इस गाने में हमें दिखा दिया है. Love this track. You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Tanisha, aapke saath bindaas morning chal raha hai ab. Radio Olive presents Blackboard Stories. So Blackboard Stories में मैंने पूछा था कि एक female donkey को क्या कहते हैं. And I've got the answers here. And apparently you all knew. So it was just me who did not know, or maybe school में ध्यान ही नहीं दिया मैंने. Yes, the female donkey is called Jenny or Janet. I was flabbergasted when I googled and I found this out. I was like, what? क्योंकि मुझे बिल्कुल ऐसे रिकॉल ही नहीं कर पा रही हूँ मैं कि मैंने स्कूल में ये चीज़ पढ़ी है, और ना ही यूजुअली ये चीज़ यूज होती है. बट दिस इज़ वेरी बेसिक स्टफ विच आई शुड बी नोइंग, राइट? पर नहीं पता था. थैंक्स टू यू गाइज नाउ आई नो, एंड थैंक्स टू मी यू विल नो द सॉन्ग्स विच आर कमिंग अप. हाईवे मूवी से ये गाना आने वाला है और रेखा भारद्वाज जी भी वेट कर रही है. एंड आई थिंक इरशाद कामिल साहब ही है जो एक सैड सॉन्ग को इतना फन बना सकते हैं. अगर ध्यान से सुनोगे तो ये गाना ब्रेकअप के बारे में है, पर क्या वाइब है इस गाने की यार. बताओ पढ़ा है तो इंतजार करो, ये गाना आ रहा है उसके साथ वाइब कर पाओगे. लेकिन फिलहाल हम सुनेंगे श्रीदेवी स्पेशल बिकॉज इट्स हर बर्थ एनिवर्सरी टुडे. एंड दिस ट्रैक इज फ्रॉम चांदनी मूवी, द टाइटल ट्रैक, जो कि श्रीदेवी जी और जॉली मुखर्जी की आवाज में है. एंड क्या खूबसूरत लगी थी श्रीदेवी इस मूवी में. दोज यू नो वाइट सलवार कुर्ता, ओए होए होए, बहुत ब्यूटिफुल. दैट वॉज अ ट्रेंड विच यशराज जी यू नो ब्रॉट इन टू द इंडस्ट्री. एंड then eventually those beautiful and क्योंकि माधुरी दीक्षित ने भी same kind of attire adapt किया था दिल तो पागल है में, and काफी सारी movies में ये adapt किया गया है. It was absolutely beautiful. So I enjoy करते हैं गाना. Stay tuned and Jio Bindaas. कभी चांदनी फैलाई तो कभी बनी हवा हवाई. बॉलीवुड की फर्स्ट फीमेल सुपरस्टार श्रीदेवी ने जब जब स्क्रीन पर अदा दिखाई बस वाहवाही ही पाई. आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर सुनते हैं रेडियो ऑलिव पर श्रीदेवी स्पेशल सॉन्ग्स.

0: listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन. रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है. कॉल 4411133. ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम. फिर से स्कूल. अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों, जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है. रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश. अबू सिद्रा मॉल में इस अगस्त 27th दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक. वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल. किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है. तो एक्सक्लूसिव एंट्री चाहिए? प्रोसेस बड़ा सिंपल है. अभी जाओ olive.qa पर, बैक टू स्कूल फॉर्म फिल करो और अपना फोन अपने पास रखना, क्योंकि हमारी कॉल कभी भी आ सकती है. स्पॉट्स लिमिटेड है तो आज ही रजिस्टर करें olive.qa पर. मिलते हैं अबू सिद्रा मॉल में. वेन्यू पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल. अबू सिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन.
2: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट.
1: क्रिएटिव पार्टनर प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव. फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट स्क्रिबल्स गल्फ ऑन इंस्टाग्राम.
3: नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन. नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन. आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3 FM.

0: सुनिए हर सुबह 6 से 10 हर जिस्तन निशा को बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 million reals विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल। जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड इट टुडे।

0: सुल्ताना और ज्योतिनोरा की आवाज में हाईवे मूवी से बहुत सुंदर गाना पटाखा गुड्डी एंड दैट लाइन ना मालिक ने जो चिंता दी तो दूर करेगा वो ही परफेक्ट है एकदम यार हम फिजूल का स्ट्रेस लेते रहते हैं. यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 एफएम त्रिशा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं यहाँ पर. My answer is still no because it is 37 degrees right now, but it feels like 45 degrees. I don't understand this. No, it is not okay. 6 km per hour की रफ्तार से हवा चल रही है and कल का temperature भी somewhat same ही होने वाला है. आज भी hazy है, कल hazy भी रहेगा और थोड़ा सा warm भी रहने वाला है. So happy weekend, ठीक है? अपना ख्याल रखो and you know stay hydrated. खाने वाने का सबसे ज़्यादा ख्याल रखो. So yesterday I ate something which was a bit you know oily और मैं like that was in the breakfast intentional नहीं था but it turned out to be and उसके बाद मैं पूरे दिन कुछ नहीं खा पाई. So it feels very heavy and weird when you eat something really heavy and oily in this weather. So please avoid that, ignore करें, light खाना खाएं, you know कम तेल घी वाला, okay? अपना ख्याल रखा कीजिए यार, आप important हो मेरी जान. और सुनते रहो रेडियो 106.3 FM.
1: अब सुनिए

0: अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्पेक्टाकुलर ऑफर के साथ।
1: लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन की वाइड रेंज ऑफ फॉर्मल वर्कवेयर, स्मार्ट कैजुअल, स्टाइलिश डेनिम्स, स्लीक सूट्स और एलिगेंट ब्लेजर्स के साथ हर आउटफिट में मिलेगा प्रीमियम फैब्रिक का टच और अनमैच डिटेलिंग का फिनिश।
0: अपने वार्डरोब को रीडिफाइन कीजिए और सोफिस्टिकेशन का एक नया अंदाज अपनाइए विद वैन ह्यूसन एंड लुई फिलिप।
1: विजिट लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्टोर्स इन ओल्ड एयरपोर्ट रोड और पाइए स्पेक्टेक्युलर ऑफर।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
3: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड इट टुडे। Thank you.

0: तनिषा
1: तनिषा यादें मूवी से उदित नारायण साहब और राशिद आई की आवाज में जब दिल मिले ओनली ऑन रेडियो 106.3 FM तनिषा आपके साथ विदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर एंड बैक टू स्कूल इज बैक. हाँ जी, सो बैक टू स्कूल के रजिस्ट्रेशन जो हैं वो आज से ऑफिशियली ओपन हो गए हैं. अगर आप अपने बच्चे को इसका पार्ट बनाना चाहते हैं, एक फन दिन का पार्ट बनाना चाहते हैं, वी आर गोना हैव अ लॉट ऑफ गेम्स, बहुत सारी मस्ती होगी, बहुत सारे गिफ्ट्स होंगे और एक यादगार पार्टी बिफोर द स्कूल स्टार्ट, एक जोश के साथ स्कूल स्टार्ट होना चाहिए. तो उस जोश के लिए रजिस्टर योर किड राइट अवे, olive.qa पर जाएं, वहां पर बैक टू स्कूल का बैनर नजर आएगा आपको, उस पर क्लिक करें और रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करें, जो भी डिटेल्स वहां मांगी गई है उन्हें फिल आउट कीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ बैक टू स्कूल बैश. 27th of August को होने वाला है ये, दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक एट अबू सिद्रा मॉल. रजिस्टर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से जाइए olive.qa पर. और अगर नहीं मिल रहा है वेबसाइट तो मुझे मैसेज करो, मैं भेज दूंगी यहाँ पे 3311063 पर मैसेज करो, आई विल शेयर द वेबसाइट विद यू सो यू कैन गो एंड रजिस्टर योर किड. आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस वन क्योंकि बहुत सारा मजा आने वाला है, काफी सारी चीजें प्लान करके रखी है हमने बच्चों के लिए एंड इट विल बी अ फन डे फॉर ऑल ऑफ अस. सेंडिंग नीरज श्रीधर और सुनील चौहान की आवाज में चोर बाजारी.
2: Venue partner, Abu Sidra Mall, where convenience meets choice and community meets style. Abu Sidra Mall, a complete family destination.
3: Gifting partner, Daiso Japan. You name it, we have it.
2: Creative partner, Planet Scribbles Worldwide, where every child's imagination comes alive. For more details, follow Planet Scribbles Gulf on Instagram.
1: And stay tuned to Radio Olive.

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।
3: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
4: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल। जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड इट टुडे।

0: मैं हूँ विवेक आनंद ओबरॉय. यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव जियो बिंदास.
1: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.

You are listening to Radio All of 106.3 FM. Tanisha app ke saath Bindas Mornings chal raha hai yahan par. And Midrash app pe now users can register their relatives also apne hi phone pe. So Ministry of Interior ne highlight kiya hai ki aap ye activate kar sakte hain apne phone. Like for your wife or your children, you can activate Midrash on your phone only. Bahut easy steps hain. Aapne main menu pe jana hai, wahan pe delegation select karna hai, phir relative रजिस्ट्रेशन पर जाना है और वहां पे सारी डिटेल्स फिल कर देनी है और ऐड कर देना है एंड दैट इज सिंपल. इट माइट आस्क यू फॉर ओटीपी एंड ऑल और अगर कोई भी गलती आ रही है लाइक यू नो कोई भी एरर आ रहा है तो चेक कीजिएगा कि क्यू आई डी और नंबर जो है वो आपने सही फिल किया है एंड इट विल बी ऑल डन मेरी जान. सो थिंग्स आर बिकमिंग ईजी. दिस इज द राइट वे ऑफ यूजिंग दिस ग्रोइंग टेक्नोलॉजी राइट एंड कतर इज डूइंग कमेंडेबल इन दैट. ऑन दैट नोट सेंडिंग एन अमेजिंग ट्रैक. स्टे ट्यून्ड.

0: दस मॉर्निंग हर जीत तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदा
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
2: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम।
1: बिंदास।
2: हाय, मैं हूँ सोहाली खान एंड यू आर लिस्टिंग टू रेडियो ओलिव जियो बिंदास।
0: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।
3: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
4: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा की आवाज में दिलवाले मूवी से गेरुआ ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम तरीशा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर. एंड कतर इज मेकिंग इट इजियर फॉर फैमिलीज एंड वुमेन टू मेक देयर यू नो स्मॉल आइडियाज अलीगल होम ग्रोन बिजनेसेस. यस, सो होम बिजनेस का जो लाइसेंस था वो 1500 रियाल कॉस्ट करता था. नाउ इट विल कॉस्ट 300 रियाल ओनली. यस, इट हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 1500 to 300. और द नंबर ऑफ एक्टिविटीज जो कि फैमिलीज कैन लीगली ऑपरेट फ्रॉम देयर होम वो भी बढ़ चुकी हैं. पहले 15 था लेकिन अब वो 63 हो गया है. इट इंक्लूड्स डेट रोस्टिंग, ज्वेलरी डिजाइन, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, वेबसाइट डिजाइनिंग, फूड प्रोडक्शन, फैशन एंड टेलरिंग, हैंडीक्राफ्ट्स, परफ्यूम एंड कॉस्मेटिक्स, इवेंट प्लानिंग, होम डेकोर एंड लॉट मोर. ये जो मूव है ये इसीलिए लिया गया है सो दैट यू नो जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, लोकल प्रोडक्शन है, इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन है, उसको और ज्यादा सपोर्ट मिल पाए और वो और ज्यादा ग्रो हो पाए. मिनिस्ट्री ऑफ सोशल डेवलपमेंट एंड फैमिली का जो होम ग्रोन इनिशिएटिव था उसने 708 फैमिलीज को सपोर्ट किया है इन 2025. एंड थ्रू दिस प्रोग्राम 75 नए प्रोडक्शन भी लॉन्च हुए थे. सो दैट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है. एंड बेस्ट पार्ट इज सोशल मीडिया और ऑनलाइन स्टोर्स जो है वो हेल्प कर रहे हैं इन बिजनेसेस को टू रीच कस्टमर्स विदाउट द कॉस्ट ऑफ रेंटिंग अ शॉप. सो दैट इज रियली कूल. सो अगर कोई भी आइडिया था आपके दिमाग में कि स्टार्ट करना है, कैसे करूं, डर लग रहा है, चलेगा या नहीं, वो सब बात की चिंता है, गो एंड रजिस्टर योर सेल्फ एंड गेट योर लाइसेंस एंड स्टार्ट डूइंग इट. धीरे धीरे एफर्ट्स डाल के ही आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे. गुड लक मेरी जान. सेंडिंग एन अमेजिंग ट्रैक योर वे. स्टे ट्यून्ड ऑन जियो बिंदास. रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
1: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है.
2: कूल सॉन्ग
3: हो गए रेडी. पुचंका चंग पुचंका

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास
1: यार, मुझे 10 GB फ्री मिला मेरे हाला रिचार्ज के साथ।
2: क्या, कैसे?
1: बस रिचार्ज करो और तुम्हें फ्री डेटा या मिनट्स मिलते हैं। कल मुझे 50 फ्री मिनट्स मिले।
2: रोज मिलता है क्या?
1: हाँ, रोज मिलता है।
2: मैं भी अपना हाला नंबर रिचार्ज कर रहा हूँ।
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडू ऐप पर। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
3: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.
4: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

पापा उनकी आवाज में सुल्तान मूवी से बुलिया, इतने सुंदर लिरिक्स है ना, मतलब ऐसे जब आप काम माइंड से बैठ के इसके लिरिक्स सुनोगे यू विल रियलाइज कि भाई क्या गाना बना दिया यार। यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 एफएम त्रिशा, आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर। और जो पुराने ट्रेंड्स थे नोटिस किया जाए तो वो सब वापस आ रहे हैं ना, लाइक अभी इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी आ चुकी है हमारे पास, यू नो वी आर इंटरनेट है हमारे पास एक्सेस में ही है और दिन भर लगे रहते हैं हम उस पे, बट द न्यू जनरेशन इज मूविंग बैक टुवर्ड्स द कीपैड वाला फोन्स जिसमें इंटरनेट ही नहीं है, ठीक है, एंड दे गेट सो एक्साइटेड वो स्नेक वाला गेम देख के। नाउ देयर इज अनदर ट्रेंड गोइंग गॉन व्हिच इज कि सीडीज होती थी ना, ये सीडी प्लेयर या उसकी सेल बढ़ गई है भाई, 16% जंप आया है 2025 में सीडीज की सेल में, एंड दैट्स एब्सोल्युटली क्रेजी। जब सारे प्लेटफॉर्म्स पे हमें गाने मिल रहे हैं, वी आर टेकिंग यू नो ऑल दी प्रेस्क्रिप्शन, व्हाट इज रॉन्ग, मैं बोलने वाली थी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन और ऐसे मिला के मैंने बना दिया प्रेस्क्रिप्शन, चलो जी, वेन वी आर टेकिंग ऑल दी सब्सक्रिप्शंस, यहाँ रेडियो पे वी आर प्लेइंग दी सॉन्ग्स फॉर यू, बट द न्यू जनरेशन इज गोइंग टूवर्ड्स CDs again. They are buying CDs. It is actually a collectible for them. क्योंकि अब तो vintage हो गया ना. I remember my mother was so crazy about music. That's where you know my love from music comes. She would buy those cassettes. जब वो cassettes वाला time था, हमारे घर पे ऐसे trunk भर भर के cassettes थी. जब वो tape recorder खराब हो गया and then we had to give it away. And one day we just took out you know from that storage room. There were two trunks full of cassettes, different, you know, sari movies ke, ghazals and everything. And then same she followed with the CDs. There were like bags full of, jaise hamare folders nahi aate, jisme hum apne documents rakhte hain, waise CDs ke bhi folders aate the, right? So we had some like 5 to 6 folders like that. Aur usme har movie ka, album ka CD hai. Jaise hi jis hafte kuch naya release hua hai, मम्मी ने खरीद के ले आना है। सो आई रिमेम्बर दैट टाइम्स एंड वीकेंड्स पर, बिकॉज आई यूज्ड टू लव डांसिंग, आई स्टिल डू, सो वीकेंड्स पर जब मम्मा घर पे होती थी ना, वी वुड जस्ट प्ले दैट, हम वो सीडी लगाएंगे जो भी नया गाना चल रहा है, ट्रेंड कर रहा है, एंड वी वुड जस्ट डांस आवर हार्ट्स आउट, इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल टाइम। नाउ जब मैं घर जाती हूँ, मम्मी अपने फोन पे होती है, मैं अपने फोन पे होती हूँ, फिर थोड़ी देर बाद मम्मा मुझे बोलती है हाँ बस फोन पे ही लगी रहना, मम्मी से बात मत करना, और ये बोल के वो खुद फिर से फोन पे लग जाती है, एंड देन आई स्टार्ट हाँ बस फोन पे लगी रहना, बेटी से बात मत करना, पर जैसे ही मैं फोन उठाऊंगी तो फिर मुझे बोलना शुरू कर देना। सो दिस कीप्स गोइंग ऑन, आई रियली फील happy that we are going towards that era again, but I do not think कि वो fully possible होगा, हम crazy addicted हो चुके हैं यार अपने phone से, it's not possible to stay away from this. What do you feel about this? बताएं मुझे 3311063 पर, sending Hosanna from you, for you from the movie एक दीवाना था, stay tuned on Jio Bindaas.

Story of the day. Story of the day. Story of the day. साउथ की छोटी सी श्री अम्मा से लेकर बॉलीवुड की हवा हवाई तक हिम्मत वाला की धमाकेदार एंट्री मिस्टर इंडिया वाली अदा चांदनी का नूर और चालबाज में एक ही पर्दे पर दो अलग जान पद्मश्री से नवाजी गई मगर उनका असली अवार्ड था वो प्यार जो हर जनरेशन ने उन्हें दिया रिमेम्बरिंग सुपरस्टार श्रीदेवी ऑन हर बर्थ एनिवर्सरी।

0: listening to Radio Olive 106.3 FM. Gio Bindas. सुनिए हर सुबह 6 से 10 आरजे तनीषा को बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: Tanisha.
1: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Tanisha, aapke saath bindaas morning chal raha hai yahan par.
2: Wacky wisdom.
1: So, Wacky Wisdom में हम आज बात करेंगे मिशलिन टायर्स की और मिशलिन स्टार्स यू कैन से. सो जो रेस्टोरेंट्स को और शेफ्स को मिशलिन स्टार्स मिलते हैं, दैट इज़ दी हाईएस्ट कलिनरी अवार्ड, राइट? एंड वो एक सिटी को, एक जगह को एक यू नो डेस्टिनेशन बना देता है फॉर टूरिस्ट एंड ट्रैवल्स टू कम एंड विजिट दैट रेस्टोरेंट और हैव फूड जो कि उस शेफ ने बनाया और जिसे मिशलिन स्टार्स मिले. नाउ वेयर डज दिस कम फ्रॉम? मिशलिन टायर्स से. यस, क्रेजी कोइंसिडेंस इट इज, बट या. सो मिशलिन टायर्स कम फ्रॉम फ्रेंड्स, टू ब्रदर्स वर देयर, मिशलिन ब्रदर्स, और उन्होंने ये टायर कंपनी स्टार्ट करी थी. नाउ 1990s की बात है और उस टाइम पे इतना ज़्यादा लोग ड्राइव नहीं कर रहे थे, सब कुछ बहुत पास पास था, तो दे वुड यू नो कम्यूट बाय वॉकिंग और अदर थिंग्स, बट दे वर नॉट ड्राइविंग एज सच, क्योंकि टायर्स ख़राब हो जाए एंड देन दे हैव टू बाई मोर टायर्स इन ऑल, गेट देम रिप्लेस और समथिंग, वो सब चीज़ें नहीं हो रही थी. नाउ जब मिशलिन टायर्स आया इन एग्जिस्टेंस, तो जो ये ओनर्स थे इसके, मिशलिन ब्रदर्स, दे वर लाइक यार ऐसा क्या करें कि लोग और ड्राइव करें, सो दैट वो अपने टायर्स को रिपेयर करवाने के लिए, रिप्लेस करवाने के लिए, दे विल बाय मोर टायर्स, यू नो, सो हमारा बिजनेस जो है वो चले बेसिकली. सो दे केम अप विद दिस आइडिया कि हम लोगों को ड्राइव करवाते हैं. अब ड्राइव कैसे करवाते हैं? दे स्टार्टेड कमिंग अप विद दिस गाइड, जिसमें यू नो फ्यूल स्टेशन और रेस्टोरेंट्स और मॉल्स, इन सब चीज़ों की गाइड था वो, कि आप यहाँ जाएंगे आपको ये मिल जाएगा, आप वहाँ जाएंगे आपको वो मिल जाएगा. सो जैसे जैसे लोगों को पता चलता गया कि अरे ये चीज़ है यहाँ पे, तो दे वुड स्टार्ट गोइंग, यू नो, एंड इट वर्कड आउट रियली वेल. लोग उसको फॉलो करने लगे, लाइक पीपल यूज टू बाय द गाइड्स और उसके बेसिस पे लोग इधर उधर जाने लगे रेस्टोरेंट्स में, और यू नो फ्यूल के लिए या फिर शॉपिंग के लिए या फिर व्हाटएवर एक्टिविटी जो भी गाइड के थ्रू मिल रही थी, दे वर गोइंग. सो इसमें से उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी निकाली. अब उनका टायर का बिजनेस तो बढ़िया हो गया, नाउ दे केम अप विद दिस मिशलिन स्टार्स वाली अपॉर्चुनिटी. सो ऐसे डिसगाइस में वो किसी फूड टेस्टर को भेजते थे एक रेस्टोरेंट में, और वहाँ पर जाके वो फूड टेस्ट करते थे, एंड देन उस मिशलिन गाइड में आता था कि स्टार्स मिलते थे, बेसिकली 1, 2, or 3 स्टार्स. अगर 1 स्टार है तो आप रुक सकते हो, एक बार यहाँ पे जाके खा सकते हो. 2 स्टार्स है तो आप दोबारा भी जा सकते हो, इट इज दैट गुड. अगर 3 स्टार्स हैं तो भाई वक्त निकाल के, अगर ये दूर भी है तो यहाँ जाना सफल रहेगा, बिकॉज इट इज सो सो गुड. एंड वो खाने की क्वालिटी, टेस्ट, वहाँ का एम्बियंस और कस्टमर सर्विस, सब चीज़ों के ऊपर ये स्टार्स तो जो थे वो डिपेंड करते थे. एंड दे स्टार्टेड पुटिंग दीज स्टार्स और रिव्यूज इन दैट गाइड जो वो टायर की सेल के लिए उन्होंने स्टार्ट करी थी. And that's how Michelin stars came into existence. Can you imagine a tire company apni tire ki sale badhane ke liye ek food review kind of thing, jo ki ek time pe, like right now it is the highest award for any restaurant chef to have. That is unfathomable to me, but genius, yaar, genius it is. The basic ye tha ki, you know, when you start a business, उसको कैसे बड़ा करे, दैट इज ऑब्वियसली अ पॉइंट, बट उसको इतना अर्जेंट और नेसेसरी लोगों के लिए कैसे बनाया जाए कि उन्हें लगे कि भाई ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए, दैट्स द स्ट्रैटेजी दे फॉलोड, एंड दैट वाज अमेजिंग, राइट? माइंड ब्लोइंग. ऑन दैट नोट, सेंडिंग एन अमेजिंग ट्रैक योर वे, स्टे ट्यून्ड, रेडियो ओलिव पर.

0: ਉਹ ਪੱਟ ਦੇ ਤੂੜਾ।
1: You are listening to Qatar's number one radio station, Radio Olive 106.3 FM, Jio Bindaas.
2: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
3: फिर से स्कूल?
2: अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों? जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है।

0: रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश। अब सिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक। वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल। किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है, तो एक्सक्लूसिव एंट्री चाहिए? प्रोसेस बड़ा सिंपल है। अभी जाओ olive.qa पर बैक टू स्कूल फॉर्म फिल करो और अपना फोन अपने पास रखना, क्योंकि हमारी कॉल कभी भी आ सकती है। स्पॉट्स लिमिटेड है, तो आज ही रजिस्टर करें olive.qa पर। मिलते हैं अबू सिद्रा मॉल में। वेन्यू पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल। अबू सिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन।
1: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट।
0: क्रिएटिव पार्टनर प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव। फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट स्क्रिबल्स गल्फ ऑन इंस्टाग्राम।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3 FM, जियो बिंदास।

0: टास मॉर्निंग, टास मॉर्निंग हर जीत तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदा मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 million riyals विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड इट टुडे।

Tanisha. दिल है मुश्किल से क्यूटी पाई ओनली ऑन रेडियो 106.3 FM तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर. एंड कुछ देर पहले मैंने सीडीज और कैसेट्स की बात की थी ना, तो टिक्का जी का मैसेज आया है उस पे. आई यूज टू हैव सीडी कैसेट इन दोहा व्हेन आई केम हियर बट नो मोर बिकॉज माय वाइफ गेव मी एन अल्टीमेटम टू गेट रिड ऑफ इट एंड नॉट टू बाय एनी मोर. ओ गॉड, ऐसा हो जाता है यार. माय मदर व्हेन शी यूज टू लाइक कलेक्ट ऑल दीज ना, सो माय फादर यूज टू गेट एंग्री कि भाई क्या क्यों इसको कलेक्ट करके रखा हुआ है आपने, क्यों, व्हाट्स द पॉइंट, वेस्ट हो रहा है पैसा. एंड शी वुड नॉट लिसन. वो जो कलेक्टेबल्स यू नो रखने का प्यार और जो पैशन होता है वो सिर्फ जिन्हें रखना है उन्हें ही समझ में आता है, आसपास वालों को नहीं. तो आई कैन सिंपथाइज विद यू टिक्का जी. और साथ में मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहती हूँ radioolive.qa जी फॉलो कर लो फटाफट से, क्योंकि कॉन्टेस्ट वगैरह चलते रहते हैं. वी कीप पोस्टिंग थिंग्स ओवर देयर. कल हमने बड़ी मजेदार सी वीडियो डाली है कशिश और मैंने, चेकआउट कीजिए उसको, जाके उस पर कॉमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इंटरेक्ट कीजिए उसके साथ. हमें भी पता चलना चाहिए ना कि चीजें आप तक पहुंच रही है. radioolive.qa ठीक है, फॉलो कर लो. और फिलहाल भेज रही हूँ मस्कारा फ्रॉम द मूवी मैं वापस आऊंगा. स्टे ट्यून्ड. बंदा

0: कुछ कुछ होते हैं ऐसे हल्का याक नहीं करो नारायण की आवाज में, बहुत ही कमाल का गाना है. एंड दिस मूवी स्टार्टेड सो मेनी ट्रेंड्स, यू नो, फ्रेंडशिप बैंड्स का, देन वो जो हेडबैंड अंजलि यूज्ड टू वेयर, समर कैंप्स का ट्रेंड. Amazing cult classic for a reason. You're listening to Radio All 106.3 FM. Tanisha aapke saath bindaas mornings chal rahe hain yahan par. And do you know captcha stands for something? Jo captcha hum fill karte hain whenever we are going to a website, jab wo verify karne ki koshish kar rahi hoti hai ki hum human hain. Irony is ki ek machine humko verify karne ko bol rahi hai ki hum human hai ki nahi. बताओ कहाँ आ गए हम. एनीवे कमिंग बैक टू कैप्चा. कैप्चा का एक फुल फॉर्म है विच इज कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस अपार्ट. जी दैट्स व्हाट कैप्चा स्टैंड्स फॉर. क्रेजी राइट. कुछ चीजों पर हम ध्यान ही नहीं देते हैं. लाइक वी नेवर थॉट राइट कि कैप्चा का कोई फुल फॉर्म होगा. मुझे तो नहीं लगा था, मुझे लगा था ये खुद ही एक वर्ड है, बना दिया होगा कुछ. ओके फाइन, आई जस्ट हैव टू सिलेक्ट द बॉक्सेस जिसके अंदर आइदर बाइक आ रही है या फिर ट्रीज आ रहे हैं या फिर ट्रैफिक लाइट्स आ रही है. बट देर इज अ फुल नेम फॉर दैट. एंड या दैट्स योर अनदर विजडम ऑफ द डे. सेंडिंग जबरदस्त हिट योर वे. गुलाब इन द वॉइस ऑफ अनुषा एंड विशाल दुदलानी. स्टे ट्यून्ड ऑन रेडियो बिंदास.
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट.

0: Танеша.
1: Vaishali Samant ki awaaz mein sajna hai mujhe beautiful rendition. I love this one. You're listening to Radio 106.3 FM. Tanisha aapke saath bindas morning chal raha hai yahan par aur back to school ke registrations officially open ho chuke hain. All you have to do is go on our website, that is radioolive.qa. wahan par aapko back to school ka ek banner nazar aayega, us pe click karenge, form open hoga, use fill kar dijiye. That's all. Yes. जल्दी जाइए, register your kids because slots बहुत कम है, फिर registrations close हो जाएंगे. तो ये मत कहना तनीषा ने बताया नहीं था, क्योंकि हम तो बता रहे हैं. देखो ठीक है, 27th ऑफ अगस्त को होने वाला है अबू सिद्रा मॉल में, दोपहर 3 से लेकर शाम 7 बजे तक. बहुत सारी मस्ती करेंगे, गेम्स होंगे, चैलेंजेस होंगे, एंड इट विल बी टू मच फन. सो डू नॉट मिस दिस आउट, गो एंड रजिस्टर योर किड राइट अवे. अगर वेबसाइट ढूंढने में से आलस आ रहा है, कष्ट हो रहा है, तो मुझे मैसेज कर दो 3311 1063 पर, मैं आपको भेज दूंगी रिप्लाई में वो वेबसाइट का लिंक. दैट इज हमारा रेडियो ऑलिव का वेबसाइट olive.qa. इट्स वेरी सिंपल, तो आप कर सकते हो. आई नो दैट राइट. फटाफट से जाओ और रजिस्टर करो अपने बच्चों को.
2: Venue partner, Abu Sidra Mall, where convenience meets choice and community meets style. Abu Sidra Mall, a complete family destination.
3: Gifting partner, Daiso Japan. You name it, we have it.
2: Creative partner, Planet Scribbles Worldwide, where every child's imagination comes alive. For more details, follow Planet Scribbles Gulf on Instagram.
1: हाँ जी, olive.qa याद रखना. एंड फिलहाल भेज रही हूँ श्रीदेवी स्पेशल ट्रैक, ना जाने कहाँ से आई है, फ्रॉम द मूवी चालबाज. स्टे ट्यून ऑन जियो बिंदास.
4: कभी चांदनी फैलाई तो कभी बनी हवा हवाई. बॉलीवुड की फर्स्ट फीमेल सुपरस्टार श्रीदेवी ने जब जब स्क्रीन पर अदा दिखाई, बस वाहवाही ही पाई. आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर सुनते हैं रेडियो ऑलिव पर श्रीदेवी स्पेशल सॉन्ग्स.

0: नमस्कार, मैं हूँ गुलराज सिंह।
1: गुलराज सिंह
0: और आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3।
1: जियो बिंदास।
2: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।
3: Let's talk again.

0: Aisha.
1: रॉकस्टार मूवीज़ मोहित चौहान और कार्तिक की आवाज में शहर में हूँ मैं तेरे यालर सिंह टू रेडियो 106.3 एफएम तनी चाव के साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं यहाँ पर 9:50 ऑलमोस्ट 1 हो चुका है और वक्त हो गया मेरे जाने का लेकिन जाने से पहले वीकेंड का रिमाइंडर जरूरी है आपके लिए कि स्ट्रेस वगैरह नहीं लेना है एकदम बढ़िया तरीके से अपना वीकेंड एंजॉय करना है व्हाटएवर यू हैव प्लान डू दैट काम का स्ट्रेस वीकेंड पे लेने का अलाउड ही नहीं है ठीक है सो हैव एन अमेजिंग वीकेंड टू योर सेल्फ अपना ख्याल रखिएगा अपने आसपास वालों का ख्याल रखिएगा और खाना यू नो लाइट ही खाना है ठीक है एंड स्टे हाइड्रेटेड एंड इफ यू हैवंट फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया radio.qs इज द हैंडल एंड बैक टू स्कूल के लिए अपने बच्चों को रजिस्टर कर लो जल्दी से हमारी वेबसाइट पर जाकर olive.qa और बहुत कम स्लॉट्स हैं रजिस्ट्रेशन जल्दी क्लोज हो जाएंगे तो देर मत लगाइए जल्दी जाइए और सुनते रहिए radio 106.3 FM जियो बिंदास मेरी जान

0: ओहो यार, क्या बढ़िया वाला गाना था ना यार, मजा सा आ जाता है। वेलकम जी, 106.3 रेडियो ऑलिव पर मैं हूँ आपकी कशिश, एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की देखो मैं कोशिश कर रही हूँ। अब आज जो है मैं थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड हूँ, लेकिन थोड़ी सी मतलब ऐसा भी लग रहा है कि यार जितनी जल्दी ये जो घड़ी के कांटे हैं ये आगे भागे उतना ज्यादा मजा आ जाए, क्योंकि आज वीकेंड है। बस ऐसा मैं तो इस होप में चलती हूँ कि बस आज का दिन और जो है कशिश सह लो, उसके बाद जो है कल आराम करेंगे, बस बस। और हर वीकेंड पे आगे मैं सेम बात करती हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे पास कुछ अलग कंटेंट होगा या कुछ और बोल दूंगी, नहीं, सेम बातें करनी होती है मुझे। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग अगर मुझे मैसेज करके कुछ इंटरेस्टिंग सा बता देंगे तो हो सकता है कि आज की बात में कुछ अमेजिंग, कुछ अलग सा निकल के आ जाए। वैसे आज कुछ जो है स्पेशल डे भी है, उसके बारे में भी हम बात करने वाले, बॉलीवुड के बारे में बात करने वाले, एंड आज हम सारा दिन आपको सुनाने वाले हैं श्रीदेवी जी के गाने, बिकॉज उनका उनकी बर्थ एनिवर्सरी है। सो श्रीदेवी जी के गाने जो है वो इंजॉय करते रहिए, और बाकी स्टे ट्यून्ड रहिए आपकी कशिश के साथ, कहते रहिए जियो बिंदास।
1: कभी चांदनी फैलाई तो कभी बनी हवा हवाई, बॉलीवुड की फर्स्ट फीमेल सुपरस्टार श्रीदेवी ने जब जब स्क्रीन पर अदा दिखाई बस वाह वाह ही पाई। आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर सुनते हैं रेडियो ऑलिव पर श्रीदेवी स्पेशल सॉन्ग्स।

0: trek. Brought to you by Danadal Pahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif Alkhol.
1: तो जी आपको वक्त बताने का वक्त हो चला है. इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 10:14. दैट इज 10:14. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.
2: मैं हूं अनिल कपूर, वीडियो ऑलिव,

0: देखो यार, मैं ना वो इंसान हूँ जो इक्वालिटी पे बिलीव करती है. मतलब मुझे जो है सब लोग इक्वल चाहिए होते हैं. अब अगर हम लोग फ्राइडे को जो है वो वीकेंड मनाने वाले हैं, तो सबको ये हक होना चाहिए ना कि उन्हें छुट्टी मिले. तो बस इसीलिए मैं तो कह रही हूँ कि इस ह्यूमिडिटी को भी आप छुट्टी में भेज दो. हमें जो है इससे इतनी मेहनत नहीं करनी है. कब से है बेचारी, कब से काम कर रही है, हमें परेशान करने में जो है लगी हुई है, जा ही नहीं रही है कहीं. तो इसे वीकेंड पे ना ऐसे थोड़ा सा छुट्टी ले लेनी चाहिए. एक दो दिन बाद आए तो हमें थोड़ा सा यू नो वीकेंड मनाने का अच्छा सा मौका मिल जाए. वेलकम जी, मैं हूँ आपकी कजिन, जो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त, जो आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की एटलीस्ट मैं कोशिश कर रही हूँ. अब ह्यूमिडिटी के चक्कर में ना स्किन ना हेयर कुछ भी जो है वो अपने बेस्ट पे आ ही नहीं पा रहा है. इस वक्त टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो दोहा में 39 डिग्री सेल्सियस हो रहा है. आज का हाईएस्ट टेम्परेचर 41 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है. एंड आज का लोएस्ट टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा. सनसेट जो है वो 6:10 पर होने वाला है. तो यानी आज थर्सडे पे ऑफिस से निकलते ही अपने लव्ड वंस के साथ जो है आप सनसेट इंजॉय कर सकते हैं चाय पीते पीते. बढ़िया, इससे बेटर वीकेंड का प्लान हो ही नहीं सकता. बाकी क्या क्या कर सकते हैं आज के दिन वो हम बातें करेंगे. बाकी आज क्या स्पेशल है उस पर भी बात करेंगे. लेकिन हीट को बीट करने के बाद कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर. सो इसे एंजॉय कीजिए और बाकी आपकी कोशिश के साथ. तो कहते रहिए जियो बिंदास.
1: कूल सॉन्ग रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर.

0: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
1: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
0: योर स्पेशल ऑफर?
1: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
0: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
1: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
2: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।

यार मूवी का टाइटल ट्रैक है, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे गाने में सिर्फ मूवी का नाम लिया जाएगा। आप जो है इस गाने को अगर अभी आपने ध्यान से सुना है तो आपको ये बात समझ आएगी कि इस गाने में, अगर ये 3 मिनट का गाना है तो इसमें जो है आई थिंक 2 मिनट तक सिर्फ चोरी चोरी चुपके चुपके यही बोला जा रहा है। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑल ओवर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जहाँ आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अब देखिए यार, आप मेरी लाइफ को मस्त कैसे बना सकते हैं, मैसेजेस करके। सो कुछ लोगों ने जो है वो सबसे पहले जो है मुझे मैसेज कर दिया, तो मैं उनके मैसेज जो है पढ़ना चाहती हूँ। गुड मॉर्निंग कशिश, मे योर डे बी फिल्ड विद मोमेंट्स दैट मेक यू फील ट्रूली अलाइव। अस्मा जी ने ये लिखा है एंड अस्मा जी मुझसे पूछ रहे हैं कशिश आप शाय है क्या, सीरियसली? ओके, आप सच में पूछ रही है कि मैं जो है शाय? नहीं, मेरे घर में मुझे कहा जाता है कि यार कशिश थोड़ी देर कभी किसी के सामने शर्माना चाहिए, अच्छा होता है, बट मुझसे शर्माया नहीं जाता है। ठीक है, आई होप आपको आंसर मिल गया। एंड मैं जानना चाहती हूँ आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं थोड़ी सी शाय हूँ, क्यों आपको ऐसा लगा बताइए अस्मा जी। उसके बाद मोहम्मद यूसुफ खान जी ने जो है रोज की तरह मैसेज किया है, हेलो कशिश गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। एंड आज का दिन देखिए यूसुफ जी, मुझे याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जो है पिछले फ्राइडे से ही इस थर्सडे का वेट कर रही थी। उसके बाद इमरान जी ने जो है वो कहा है कि कुछ अच्छे गाने जो है उन्हें सुनने का मन है, सो बिल्कुल आपके लिए अच्छे गाने जो है वो हम चलाएंगे। एंड इन्होंने लिखा है कि आपका ये जो प्रोग्राम है ये सुनने में हमें एक अपनापन सा फील होता है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच आपकी इस प्यारे से मैसेज के लिए। एंड आपकी जो गानों की फरमाइश है वो हम कोशिश करेंगे कि पूरी कर सके। बाकी आप सब जो सुन रहे हैं और आपने मैसेज नहीं किया है, किसका इंतजार कर रहे हो? 3311063 इज अ नंबर, जल्दी से अपना फोन उठाओ, व्हाट्सएप पे जाओ एंड हमें मैसेज कर दो, कुछ भी मैसेज कर दो यार मुझे। वैसे थोड़ी सी देर में जो है आपसे कुछ सवाल भी मैं पूछने वाली हूँ जिसका जवाब आप दे सकते हो, ओपिनियन जो है वो आप दे सकते हो। फिलहाल अमेजिंग वाले गाने आ रहे हैं आपके रेडियो सेट पर, तो इन्हें एंजॉय कीजिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।

0: Radio Olive Bay. Story of the day.
1: Story of the day.
2: साउथ की छोटी सी श्री अम्मा से लेकर बॉलीवुड की हवा हवाई तक, हिम्मत वाला की धमाकेदार एंट्री, मिस्टर इंडिया वाली अदा, चांदनी का नूर और चालबाज में एक ही पर्दे पर दो अलग जान, पद्मश्री से नवाजी गई, मगर उनका असली अवार्ड था वो प्यार जो हर जनरेशन ने उन्हें दिया। रिमेम्बरिंग सुपरस्टार श्रीदेवी ऑन हर बर्थ एनिवर्सरी।
0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, रेडियो ओलिव 106.3 FM।

हाय हाय, क्या एनर्जेटिक गाना था। मतलब अगर आप इतना एनर्जेटिक गाना सुन लेते हैं तो अचानक से जो एंजाइटी है वो आपके शरीर को, आपकी बॉडी को छोड़ देती है। आप कहेंगे आ गई वापस कशिश अपनी एंजाइटी को दूर भगाने वाले नुस्खों के साथ। स्ट्रेस को कैसे दूर भगाया जाए। वेलकम जी, 106.3 रेडियो ओलिवर। मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ मैं लाइफ मस्त है जो लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अब देखो यार, हर रोज मैं आपको ऐसे आके तरीके तो बता देती हूँ जिससे आप अपना स्ट्रेस जो है उसे कंट्रोल कर सकते हो या दूर कर सकते हो, लेकिन मेजर एक रीजन है आपकी एंजाइटी की और आपके स्ट्रेस की कि आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है। एंड शायद ये एक दूसरे से बहुत इंटर रिलेटेड भी है। स्ट्रेस होता है तो नींद नहीं आती, और नींद नहीं आती तो और ज्यादा स्ट्रेस होता है, कॉर्टिसोल बढ़ जाता है, और उसके बाद आपकी हेल्थ पे भी काफी गलत असर जो है वो पड़ सकता है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे प्लांट्स बताने वाली हूँ जो आपकी नींद में आपकी काफ़ी मदद करेंगे। यानी आप अगर ये प्लांट्स जो है अपने घर लेकर आते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक सेंस लाइक फील ऑफ रिलैक्सेशन मिलेगा एंड आप रिलैक्स कर पाएंगे एंड आपको इन शॉर्ट अच्छा लगेगा। सो अगर आप प्लांट्स लाने का सोच रहे हैं तो अपनी स्लीप को इम्प्रूव करने के लिए, अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए आप कुछ प्लांट्स जो मैं आपको बता रही हूँ वो ला सकते हैं। सबसे पहले तो लैवेंडर बहुत ही खूबसूरत होता है, आपके घर में एस्थेटिक भी लगेगा एंड ये जो है आपके हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को लो करने में जो है काफ़ी मदद करता है। उसके बाद जैस्मिन आप ला सकते हैं। रिसर्च जो है वो ये कहती है कि ये काफी यू नो पीस लेकर आता है, और पीस की बात की है तो पीस लिली को हम भूल ही नहीं सकते हैं। ये जो है एब्जॉर्ब करता है आपके इंडोर फर्नीचर की जितनी भी यू नो एक एनर्जी होती है उसे, तो बेटर आपको जो है नींद आएगी इससे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ स्नेक प्लांट की, तो ये जो है रात में आपको एक कंफर्ट स्लीप देने के लिए जो है कुछ ऐसे एंजाइम्स है जो रिलीज करता है जो आपको काफी हेल्प कर सकते हैं। एलोवेरा जो है वो भी जो है ऑक्सीजन रिलीज करता है रात में जो आपकी स्लीप को बेटर कर सकते हैं। स्पाइडर प्लांट जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हवा में से निकालता है ताकि आपकी स्लीप बेटर हो एंड आपका जो स्ट्रेस हो वो दूर हो जाए। सो अगर आप एक प्लांट पेरेंट बनना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका घर एस्थेटिक लगे, ग्रीन लगे एंड आपकी नींद भी पूरी हो, आपको स्ट्रेस भी ना हो, तो ये कुछ प्लांट्स थे जो आप लेकर आ सकते हैं। बाकी मैसेज जो है वो मुझे काफ़ी लोग कर रहे हैं, आप भी करते रहिए 3311063 पर। थोड़ी सी देर में आकर ये मैसेजेस जो है वो हम पढ़ने वाले। सो स्टे ट्यून्ड रहिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. Jio
1: Bindas.
2: Brought to you by
1: Nainital Pahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif Alkhol.
3: तो जी आपको वक्त बताने का वक्त हो चला है इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 11:14 दैट इज 11:14 स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास
4: हेलो टू ऑल द लिसनर्स ऑफ

0: कब तक रहूं सबसे छोटा, आए कोई मुझसे छोटा। मैं भी यही सोचती हूँ। मतलब मेरे ऑफिस में मैं जहां भी जाती हूँ या जिस भी रूम में मैं काम कर रही होती हूँ वहां पे मैं सबसे छोटी होती हूँ। एंड मुझे ऐसा लगता है कि मेरे छोटे होने की वजह से सब जो है ऐसा कर देते हैं कि यार ये तो बच्ची है तो फिर मुझे ऐसा लगता है कई बार कि मुझसे भी छोटा कोई होना चाहिए जिसे मैं भी बता सकूं कि क्या करना है। बस एक दो साल की बहुत बात और है, फिर मैं जो एक्सपीरियंस जो जाऊंगी और मेरे अंडर भी कोई काम करेगा। ये देखो छोटी छोटी चीजें जो है वो सोच सोच के खुश हो जाती हूँ मैं। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जहाँ आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बना रही हूँ मैं। एटलीस्ट देखो कोशिश तो कर ही रही हूँ। अब देखो यार, लाइफ ना उन लोगों की मस्त होती है जिनके पास नेचुरली कुछ फ्लेक्स करने के लिए होता है। मतलब लोग जो है कार लेके फ्लेक्स करते हैं या नया फोन लेके फ्लेक्स करते हैं या अपने एक्सेंट को फ्लेक्स करते रहते हैं, सोशल मीडिया फॉलोअर्स को फ्लेक्स करते रहते हैं, लेकिन नेचुरली अगर आपके पास कुछ है जो फ्लेक्स करने लायक है तो बहुत ही बढ़िया बात होती है। जैसे कुछ लोग होते हैं लेफ्ट हैंड से काम करने वाले, लेफ्टीज हम उन्हें बोलते हैं, लेफ्ट हैंडेड लोग हम उन्हें बोलते हैं। सो क्या होता है कि ये ना बहुत हर बात पे फ्लेक्स करते हैं कि मैं तो ना लेफ्टी हूँ ना, सो मैं इधर से लिखूंगा, नो वो मुझे सूट नहीं करता है, मैं इस साइड बैठूंगा क्योंकि मैं लेफ्टी हूँ। ऐसे ना बहुत बार जो है फ्लेक्स करते हुए आपने लोगों को देखा होगा। सो मुझे जो है आज वर्ल्ड लेफ्ट हैंडर्स डे वाले दिन जो है आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, और मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि यार ये जो लेफ्ट हैंडेड लोग होते हैं यानी जो लेफ्ट हैंड का यूज़ ज़्यादा करते हैं, ये इतना इतराते क्यों हैं? इतना क्या खास है लेफ्ट हैंडेड होने के बारे में? बाकी फैक्ट्स जो है मैं आके बताऊंगी। अगर आपके पास जो है कोई फन अगर इंसिडेंट है या आपका कोई फ्रेंड है या आप अगर लेफ्ट हैंडेड है तो प्लीज मुझे जल्दी से मैसेज करो और मुझे बताओ कि यार आखिर इन लोगों के साथ क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मैं तो देखो राइट ही हूँ एंड लेफ्ट हैंड मेरा बहुत ही कम चलता है। मतलब लिटरली मैं जो है अपने लेफ्ट हैंड से जो ग्लास है उसमें से पानी भी नहीं डाल पाती हूँ बॉटल से पकड़ के, वो भी गिर जाता है। सो आप बताइए मुझे कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है अगर आप लेफ्टी हैं तो, या अगर आपके कोई फ्रेंड के साथ आपका कोई ऐसा इनकाउंटर रहा है तो बताइए मुझे 3311063 पर। आने के बाद थोड़ी सी देर में इन गानों के उस पार मैं आपको बताऊंगी कुछ फैक्ट्स लेफ्ट हैंडेड लोगों के बारे में। फिलहाल कूल सॉन्ग ऑफ द आवर आ रहा है रेडियो सेट्स पर, इसे एंजॉय कीजिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience. Served with pride. Danadal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Alkhor.
2: Oh no, fir se school.
3: अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों? जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है. रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश. अबू सिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक. वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉन स्टॉप धमाल. किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है. तो एक्सक्लूसिव एंट्री चाहिए? प्रोसेस बड़ा सिंपल है. अभी जाओ olive.qa पर बैक टू स्कूल फॉर्म फिल करो और अपना फोन अपने पास रखना, क्योंकि हमारी कॉल कभी भी आ सकती है. स्पॉट्स लिमिटेड है तो आज ही रजिस्टर करें olive.qa पर. मिलते हैं अबू सिद्रा मॉल में. वेन्यू पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल. अबू सिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन.
4: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट.
3: क्रिएटिव पार्टनर प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव. फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट स्क्रिबल्स गल्फ ऑन इंस्टाग्राम.

ओहो बचपन की याद आ गई भाई, मतलब मैंने बड्डे और बबली इतनी रिपीट में देखी है ना यार मूवी में, क्या बताऊं। और इसी मूवी का एक और गाना है धड़क धड़क धड़क धड़क, उस पे तो मैंने स्कूल में डांस भी किया है। वेलकम जी 106.3 रेडियो पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने के लिए देखो आपसे बातचीत कर रही हूँ मैं। अब देखिए क्या होता है ना कि जब आप में कोई स्पेशल क्वालिटी होती है तो आप उसको थोड़ा एक्स्ट्रा फ्लेक्स करते हो, स्पेशली अगर आप लेफ्ट हैंड से लिखने वाले इंसान हो। इस दुनिया में जो है मतलब पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 10% ऐसे लोग होते हैं जो लेफ्ट हैंड से लिख सकते हैं या लेफ्ट हैंड उनका जो है प्रोमिनेंट हैंड होता है। सो अगर आप उनमें से हैं तो आप बहुत ही यूनिक हैं एंड फ्लेक्स करने वाली बात भी है। सो आज जो है लेफ्ट हैंडर्स डे है, सो आज बस उसी के बारे में मैं बात कर रही थी आप लोगों से कि यार ऐसा क्या खास होता है इनमें। सो मुझे जो है एक ऑडियो नोट भी आया है जो मैं आपको थोड़ी सी देर में विनायक जी का जो है वो सुनाने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले हम कुछ फैक्ट्स बात करना चाहती हूँ मैं लेफ्ट हैंडर्स के। सो ब्रेन और क्रिएटिविटी की अगर हम बात करें, सो जो राइट ब्रेन डोमिनेंस है ना लेफ्ट हैंडेड लोगों का वो ज्यादा होता है। अब जो आपका राइट ब्रेन होता है यानी जो राइट साइड का जो ब्रेन होता है ना वो ज्यादा एक्टिविटी पे डिपेंडेंट होता है, यानी अगर आपका राइट साइड ज्यादा एक्टिव है तो आप म्यूजिक और क्रिएटिव चीजों में ज्यादा एक्टिव रहोगे। इसीलिए ज्यादातर जो आर्टिस्ट होते हैं वो लेफ्ट हैंडेड होते हैं और इनका जो प्रोसेसर होता है ना दिमाग का वो काफ़ी फास्ट होता है एंड इनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ जो है वो भी ज़्यादा होती हैं। स्पोर्ट्स में जो है ये काफ़ी एक्टिव रह सकते हैं एंड इनको जो है एक जेनेटिक फैक्टर मिलता है कि अगर दोनों पेरेंट्स जो है वो लेफ्ट हैंडेड है तो बच्चे लेफ्ट हैंडेड होने का जो चांस है वो 25% तक जो है वो बढ़ जाता है। तो देखो यार लेफ्ट हैंडेड होने का भी अपना फ़ायदा है, अपनी क्रिएटिविटी। अब नेक्स्ट टाइम कोई आपका मजाक उड़ाए लेफ्ट हैंडेड होने का तो आप उनको ये सारे फैक्ट्स बता दीजिएगा एंड अगर आपका कोई दोस्त है तो एक बार जाकर उसे ये फैक्ट जरूर बता दीजिएगा, हो सकता है उन्हें अपनी शक्तियों का खुद अंदाजा ना हो। बाकी आने के बाद विनायक जी का एक ऑडियो नोट जो है वो मैं आपको सुनाने वाली, उन्होंने क्या कहा है अपने लेफ्ट हैंडेड दोस्तों के बारे में वो आपको बताऊंगी। तब तक अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है तो आप शेयर कर सकते हैं मुझसे 3311063 पर। फिलहाल एक अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, इसे एंजॉय कीजिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।

Story of the day. Story of the day. साउथ की छोटी सी श्री अम्मा से लेकर बॉलीवुड की हवा हवाई तक हिम्मत वाला की धमाकेदार एंट्री मिस्टर इंडिया वाली अदा चांदनी का नूर और चालबाज में एक ही पर्दे पर दो अलग जान पद्मश्री से नवाजी गई मगर उनका असली अवार्ड था वो प्यार जो हर जनरेशन ने उन्हें दिया।

0: उदित नारायण और अलका याग्निक आपकी रेडियो सेट पर, और अब मैं भी आ गई हूँ। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑल ओवर। मैं हूँ आपकी कसो शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्ट है, जहाँ आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की देखो एटलीस्ट मैं कोशिश कर रही हूँ। अब आज हम बात कर रहे थे लेफ्ट हैंडेड लोगों पर कि ये इतना फ्लेक्स क्यों करते हैं, और आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं। सो वादे के अनुसार मैं आपको जो है एक ऑडियो नोट सुना रही हूँ जो अभी अभी मतलब थोड़ी देर पहले मुझे मिला है। सो आइए सुनते हैं।
1: हाय रेडियो ऑलिव, गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है विनायक, और ये जो टॉपिक है लेफ्ट हैंड, क्या ही बताऊं। आज ही मैंने सुबह एक इंसान को लेफ्ट हैंड से खाना खाते हुए देखा, तो मुझे थोड़ा बहुत पुराना दिन याद आ गया था, बट आई स्वेयर मुझे मालूम नहीं कि आज लेफ्ट हैंडेड डे है। काफी सारे दोस्त भी है हमारे जो लेफ्ट हैंडर्स है, मेरे एक दोस्त भी है जो रूम में वो भी लेफ्ट हैंडर है, और ये लेफ्ट हैंड के बारे में क्या ही कहना। एक वक्त था अगर लेफ्ट हैंडेड कोई दिख गया, फिर लेफ्ट हैंडेड कोई दोस्त हुआ, तू लेफ्ट हैंड है, तू लेफ्ट हैंड है, तो लेफ्ट हैंड में से सब होता है तेरा ऐसा वैसा, और बहुत सिली सिली फन जोक्स होते थे और बातचीत होती थी। और हम लोग वो टाइम पे यानी कि ऑब्वियसली वी आर 19 बोर्न, सो हम लोग लेफ्ट हैंडर बोलते हैं, वो लेफ्ट हैंडर बहुत पावर है यार इसके हाथ पे, ऐसा ऐसा सब बातें करते थे। और लेफ्ट हैंडर समथिंग रियली दे आर वेरी स्पेशल।
0: I agree with you, I totally agree with you विनायक जी। एंड लेफ्ट हैंडर्स के बीच में के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो कुछ लेफ्ट हैंडर्स ने भी मैसेज किया और उन्होंने कहा कि हम ऑलमोस्ट जो है वो लेफ्ट हैंडेड है, हम सारा काम जो है वो लेफ्ट हैंड से करते हैं, लेकिन हम बस खाना राइट हैंड से खाते हैं। कुछ ऑब्सेशन है ना हम देसी लोगों का राइट हैंड से खाना खाने में, मतलब जो इंसान अपनी लाइफ की हर चीज़ लेफ्ट हैंड से करता है उसको बोलते हैं कि नहीं खाना तो तुमको राइट हैंड से ही खाना पड़ेगा। फिलहाल देखिए ऑल फ्रेश सॉन्ग ऑफ दी आर सुनने का वक्त हो चला है, सो चलिए अपने जो है रेडियो की वॉल्यूम जो है उसे बढ़ा लीजिए, ये गाना एंजॉय कीजिए, और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।

अल्टीमेट ब्रेकअप सॉन्ग जो है नेहा कक्कड़ की आवाज में आपने एंजॉय किया अर्जुन कानूंगो के साथ। मैं हूँ आपकी कशिश, शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश तो देखो कर ही रही हूँ। बाकी वक्त हो गया है आपको फैशन की दुनिया में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है वो बताने का। एंड लिटरली मैं आपको बताऊं, कपड़े जो है वही इस वक्त ट्रेंड कर रहे हैं जो आपकी मम्मी के टाइम पे चला करते थे। मतलब अगर मैं अपनी एज की बात करूं तो मैंने जो कपड़े मम्मी को उनकी पुरानी कॉलेज की फोटोज में पहने हुए देखा है वो सारे कपड़े इस वक्त जो है वो वापस आ गए। आप उठा के देख लो यार, कोई फेमस मूवी, मेरी फेवरेट मूवी से बात कर लेते हैं कभी खुशी कभी गम, उसमें जितने भी आउटफिट्स पू ने पहने हैं वो इस वक्त इन ट्रेंड चल रहे हैं। सो कपड़ों का तो मैं ऐसे कुछ नहीं बताना चाहती, लेकिन हाँ अगर आपको यू नो ब्यूटी प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग काफी फैसिनेटिंग लगती है एंड वो कलेक्ट करने का काफी शौक है, सो इस वक्त काफी ट्रेंड कर रहे हैं चार्म्स। एंड चार्म्स मतलब स्किन केयर वाले चार्म्स, यानी वो आप अपने बैग में अटैच कर सकते हो, स्किन केयर, लिपस्टिक, लिप बाम, लिप ग्लॉस और उनके क्यूट पैकेजेस। और अगर आपकी जो ऑलरेडी जो आपका प्रोडक्ट है वो बैग चार्म बन के नहीं आ रहा है, सो बहुत ही एस्थेटिक एंड क्यूट एंड क्वर्की जो है वो चार्म्स मिल रहे हैं जिसमें आप अपना स्किन केयर या अपने लिप ग्लॉसेस, लिप बाम जो है वो अटैच कर सकते हो, जो काफ़ी इन ट्रेंड चल रहा है। सो अगर आपको अपने बेसिक बैग को जो है थोड़ी सी और यूटिलिटी देनी है और थोड़ा सा और क्वर्की बनाना है, थोड़ा सा और क्यूट बनाना है, तो ऐसे चार्म्स जो है वो आप ट्राई कर सकते हो एंड लिटरली बहुत ही ज़्यादा ऑसम लगता है। मैं तो खुद आज जाके करने वाली हूँ, मतलब कुछ DIY करने को होना तो चाहिए ना वीकेंड पे। सो करो, मुझे फोटो भेजना। बाकी 3311063 पर अगर कोई ट्रेंड आपके पास है तो वो आप मुझे बता सकते हैं। फिलहाल एक बहुत ही अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पे, वॉल्यूम बढ़ाओ, इंजॉय करो आपकी कशिश के साथ और कहते रहो जियो बिंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. Jio
1: Bindas. Time check. Brought to you by Nainital Pahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif Alcor.
2: तो जी आपको वक्त बताने का वक्त हो चला है इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे 12:09 दैट इज 12:09 स्टे ट्यून्ड एंड जियो बिंदास।
3: हेलो लिसनर्स, मेरा नाम है राजपाल यादव और आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव

0: अरिजीत सिंह की आवाज में ये अमेजिंग वाला गाना आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो एलिफेंट। मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइव मस्त है, जो आप लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की, देखो हम बातचीत कर रहे हैं। अब मैं आपको बताने वाली थी इंस्टाग्राम का एक ऐसा हैक जिससे आप अपनी रील्स को वायरल कर सकते हैं एंड हो सकता है कि आपको थोड़े से रिवॉर्ड्स भी मिल जाए। अब अक्सर जो है क्रिएटर्स क्या करते हैं, अपनी रील को एंड करते हुए जो है वो ये लिखते हैं कि फॉलो शेयर एंड सेव कर लो और ऐसी चीज़ें बोलते हैं, लेकिन आपको जो है ऐसे नहीं बोलना है। आपको अपनी एंड में अपनी अगली रील या अपना अगला कंटेंट जो है वो टीज कर देना है। इससे क्या होता है कि एक ट्विस्ट जो है वो बरकरार रहता है एंड लोगों को लगता है कि ठीक है आप अपने कंटेंट को लेके थोड़े से सीरियस हो। एंड आप एंडिंग में जो है एक पोल भी क्रिएट कर सकते हो जिससे जो है लोगों के व्यूज आपकी रील पे पता चल जाएंगे। सपोज आप बात कर रहे हैं हाइड्रेशन पे, सो आप बस जाते जाते उनसे पूछ सकते हैं आपको क्या लगता है हाँ या नहीं। सो उससे क्या होगा कि लोगों को ऐसा लगेगा कि ठीक है आप उनसे इंटरैक्ट करना चाह रहे हो, आप फीडबैक जो है वो उनका जानना चाह रहे हो एंड आप अपनी ऑडियंस को भी जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक चूज करने की आज़ादी दे सकते हो कि यार आप बताओ अब नेक्स्ट वीडियो जो है वो किस पर बनाई जाए। तो इससे आपकी जो रील है उस पर इंगेजमेंट जो है वो बढ़ने का तरीका बढ़ जाता है। एंड ये सब जो मैं तरीके बता रही हूँ ज़्यादातर इंफोटेनमेंट वाली जो वीडियोज होती हैं जिसमें आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो या आप कुछ सिखा रहे हो उसमें ज़्यादा काम करती है। सो व्लॉग्स भी अगर आप बना रहे हो तो आप ये कह सकते हो कि यार आप अगला व्लॉग जो है वो कहाँ का देखना चाहते हो, या अगर आपने कुछ ऑलरेडी सोच के रखा है तो आप वो उन्हें एक स्नीक पिक दे सकते हो कि यार देखो मैं जो है अब फ्राइडे को यहाँ यहाँ जाने का सोच रही हूँ, अगर आप चाहते हो कि इस पे व्लॉग में बनाओ तो मुझे बताओ। सो इससे क्या होगा इंगेजमेंट बढ़ेगा। मैं तो देखो ट्राई करने वाली हूँ, आप ट्राई करके मुझे जरूर बताना कि आपको लगा कि ये सही है या नहीं है। फिलहाल कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, इसे एंजॉय कीजिए एंड आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

राधा पोडवाल की आवाज में तुम बिन मूवी का ये ट्रैक आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो एफएम। मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ मैं बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही खास एंड बहुत ही ब्यूटीफुल। लाइफ मस्त है शो का नाम है एंड जैसे आपको पता है कि आज बर्थ एनिवर्सरी है श्रीदेवी जी की, सो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको श्रीदेवी जी की कुछ अमेजिंग मूवीज जो है वो मैं रिकमेंड कर दूँ, क्योंकि हर रोज आती हूँ एक नई मूवी रिकमेंड करती हूँ तो कुछ पुरानी मूवीज भी तो देखनी बनती है ना। तो बस इसीलिए अगर आप ऐसी जनरेशन से यानी मेरी जनरेशन से बिलोंग करते हैं जिन्होंने श्रीदेवी का आइकॉनिक एरा जो है वो मिस कर दिया है, सो कुछ मूवीज हैं जो आपको देखनी चाहिए, आपको श्रीदेवी जी का पूरा ऑरा जो है वो समझ आ जाएगा। सो सबसे पहले तो मिस्टर इंडिया 1987 में ये मूवी आई थी, श्रीदेवी जी ने बहुत ही प्यारा रोल इसमें निभाया है एंड उनकी कॉमिक टाइमिंग जो है वो एकदम परफेक्ट है। हवा हवाई आइकॉनिक सॉन्ग उस मूवी का आपने सुना ही होगा। उसके बाद अगर थोड़ी नई मूवीज में आए जो मैंने देखी है, मुझे अच्छे से याद है 2012 की मूवी है इंग्लिश में इंग्लिश, जो उनकी कमबैक मूवी थी, बहुत ही बढ़िया ब्लॉकबस्टर मूवी है, इंस्पायरिंग मूवी है एंड उस मूवी के गाने इतने रिलेवेंट है, इतने बढ़िया है एंड बहुत ही मजा आएगा आपको देखकर, एक बार जरूर से देखिए। एंड अगर थोड़े से यू नो सीरियस कैरेक्टर वाली आपको मूवी देखनी है तो 1983 की सदमा मूवी जो है वो आप देख सकते हो, ये उनकी करियर की सबसे फाइनेस्ट परफॉर्मेंस में से एक मानी जाती है एंड चाइल्ड लाइक इनोसेंस के साथ जो है हमेशा आपको अच्छी ही लगेगी। सो ये मूवीज आप जरूर देखिए, तीनों मूवीज मैंने आपको बताई है, सदमा, इंग्लिश विंग्लिश एंड मिस्टर इंडिया, जाओ देखकर आओ। एंड श्रीदेवी जी की बर्थ एनिवर्सरी पे उनके गाने भी हम सुनेंगे एंड उनके बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको बीच बीच में मिलती रहेगी। फिलहाल राउडी राठौड़ मूवी से एक अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, इसे एंजॉय कीजिए एंड आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जी ओपन दास।

0: Story of the day. Story of the day. साउथ की छोटी सी श्री अम्मा से लेकर बॉलीवुड की हवा हवाई तक, हिम्मत वाला की धमाकेदार एंट्री, मिस्टर इंडिया वाली अदा, चांदनी का नूर और चालबाज में एक ही पर्दे पर दो अलग जान, पद्मश्री से नवाजी गई, मगर उनका असली अवार्ड था वो प्यार जो हर जनरेशन ने उन्हें दिया। रिमेम्बरिंग सुपरस्टार श्रीदेवी ऑन हर बर्थ एनिवर्सरी।
1: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM, जियो बिंदास

मरे के गाना एंजॉय किया आपने 106.3 रेडियो ऑलिवर। मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है। अब देखिए यार, मेरे यहाँ से जाने का वक्त आ गया, आपको टाटा बाय बाय करने का वक्त आ गया, तो मैं चलती हूँ। कल मुलाकात होगी अपने टेक वाले शो में, तो आना बिल्कुल मत भूलना शाम को 4 बजे। बाकी अपना वीकेंड एंजॉय करते रहिए और आपकी कसूस के साथ कहते रहिए जियो बिंदास, स्टे ट्यून्ड, टाटा बाय बाय।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो। ओह नो, फिर से स्कूल। अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों? जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है। रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश। अबू सिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक। वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल। किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है। तो एक्सक्लूसिव एंट्री चाहिए? प्रोसेस बड़ा सिंपल है। अभी जाओ olive.qa पर, बैक टू स्कूल फॉर्म फिल करो और अपना फोन अपने पास रखना, क्योंकि हमारी कॉल कभी भी आ सकती है। स्पॉट्स लिमिटेड है, तो आज ही रजिस्टर करें olive.qa पर। मिलते हैं अबू सिद्रा मॉल में। वेन्यू पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल। अबू सिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन।
3: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट।
1: क्रिएटिव पार्टनर प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव। फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट स्क्रिबल्स गल्फ ऑन इंस्टाग्राम।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।
3: Hi Radio Olive 106.3 listeners. This is Shah Rukh Khan.
4: Hi, this is Ajay Devgan.
5: Hi, this is Akshay Kumar.
6: Hi, this is Anushka Sharma.
7: And I'm Ashwin Vasi.
8: This is Ranveer Singh. Stay tuned.

0: Manila's number one radio station, Radio Olive 106.3 FM, Gio Bindas.
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन. रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है. कॉल 4411133. ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम.
0: Olive Music Marathon. 1 ghanta non-stop battle.

0: अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्पेक्टाकुलर ऑफर के साथ।
1: लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन की वाइड रेंज ऑफ फॉर्मल वर्कवेयर, स्मार्ट कैजुअल, स्टाइलिश डेनिम्स, स्लीक सूट्स और एलिगेंट ब्लेजर्स के साथ हर आउटफिट में मिलेगा प्रीमियम फैब्रिक का टच और अनमैच डिटेलिंग का फिनिश।
0: अपने वार्डरोब को रीडिफाइन कीजिए और सोफिस्टिकेशन का एक नया अंदाज अपनाइए विद वैन ह्यूसन एंड लुई फिलिप।
1: विजिट लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्टोर्स इन ओल्ड एयरपोर्ट रोड और पाइए स्पेक्टेक्युलर ऑफर।
2: ओ नो, फिर से स्कूल।
1: अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों, जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है। रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश। अबू सिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक। वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल। किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है, तो एक्सक्लूसिव एंट्री चाहिए? प्रोसेस बड़ा सिंपल है, अभी जाओ olive.qa पर बैक टू स्कूल फॉर्म फिल करो और अपना फोन अपने पास रखना, क्योंकि हमारी कॉल कभी भी आ सकती है। स्पॉट्स लिमिटेड है तो आज ही रजिस्टर करें olive.qa पर। मिलते हैं अबू सिद्रा मॉल में। वेन्यू पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल। अबू सिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन।
3: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट।
1: क्रिएटिव पार्टनर प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव। फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट स्क्रिबल्स गल्फ ऑन इंस्टाग्राम।
4: Olive Music Marathon, 1 ghanta non-stop back to back gaane.

0: दीपिका पादुकोण,
1: दीपिका पादुकोण,
0: रेडियो ओलिव 106.3.
2: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: Morning and night.

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।

सभी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वैग के साथ स्वागत है। ये है रेडियो ऑलिव 106.3 FM, मैं हूँ आपका मेजबान सुदेव। तो भाई चलिए कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, और बांध रखिए तो कस के बांध लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमें उड़ान भरने वाले हैं, जर्नी किक स्टार्ट करने वाले हैं, जहाँ पे हम बातें करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, गाने सुनाएंगे, गुनगुनाएंगे, ढेर सारे किस्से, खबरें, कहानियां शेयर करेंगे, बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपके साथ वक्त बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ऑलिव रिचार्ज को। ये है रेडियो ऑलिव 106.3 FM, मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। जियो बिंदास।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलवे 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे भाई बहुत ही बढ़िया एक खबर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। फिनलैंड में जो है एक नई टेक्नोलॉजी को जो है डेवलप करने की बात की गई है, ऐसी टेक्नोलॉजी जहां पे इलेक्ट्रिसिटी जो है वायरलेस तरीके से हम पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं विदाउट एनी केबल्स। समथिंग वेरी सिमिलर जो है वो निकला टेस्ला भी ट्राई कर रहे थे, बट जब वो ट्राई कर रहे थे तो सब लोगों ने उन्हें बोला कि भाई ये पागल है करके, ये सेफ नहीं है करके। मगर अभी फिनलैंड जो है ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आ रहा है जिसमें पावर को जो है ट्रांसमिट किया जा सकता है वायरलेसली विदाउट एनी केबल्स। और अगर ये टेक्नोलॉजी आ गई तो बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा भाई। और यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है।

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.
3: Yeah. Wanna feel that?

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM. मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे एक बहुत ही प्यारी सी बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा. मुझे एक मैसेज आया है अमित भाई का. अमित भाई ने बोला कि हेलो सुदेव भाई, बचपन के गेम्स के बारे में आपकी बात जो है मैंने सुनी और मुझे याद है जब हम छोटे थे और रात को कभी कभी ना ऐसे इलेक्ट्रिसिटी चली जाती थी तो हम कुछ लोग बच्चे मिलके ऐसे तब छुपन छुपाई खेलते थे, हाइड एंड सीक खेलते थे. फन बहुत ज्यादा होता था क्योंकि अंधेरा है, पता नहीं चलता, तो उसका थ्रिल बहुत अलग था. अभी वो सब चीजें बहुत मिस कर रहे हैं हम करके. अरे अमित भाई, कोई गल नहीं जी, कोई गल नहीं, बट आपने भी काफी बढ़िया बढ़िया मेमोरीज बनाए. थैंक यू सो मच ये मेमोरी मेरे साथ शेयर करने के लिए. और यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास.

Story of the day. Story of the साउथ की छोटी सी श्री अम्मा से लेकर बॉलीवुड की हवा हवाई तक, हिम्मत वाला की धमाकेदार एंट्री, मिस्टर इंडिया वाली अदा, चांदनी का नूर और चालबाज में एक ही पर्दे पर दो अलग जान, पद्मश्री से नवाजी गई, मगर उनका असली अवार्ड था वो प्यार जो हर जनरेशन ने उन्हें दिया। रिमेम्बरिंग सुपरस्टार श्रीदेवी ऑन हर बर्थ एनिवर्सरीज।

कभी चांदनी फैलाई तो कभी बनी हवा हवाई। बॉलीवुड की फर्स्ट फीमेल सुपरस्टार श्रीदेवी ने जब जब स्क्रीन पर अदा दिखाई बस वाह वाही ही पाई। आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर सुनते हैं रेडियो ऑलिव पर श्रीदेवी स्पेशल सॉन्ग्स।

आप सुन रहे हो एक और बार स्वागत है, आप सुन रहे हो रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM, मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और यहां पे मैंने एक रील देखा, ठीक है, वो रील था कि हमारे फेस के शेप के हिसाब से कैसे हम अपने बियर्ड को स्टाइल कर सकते हैं ताकि हमारा लुक जो है और अपीलिंग हो जाए और बढ़िया हो जाए, और काफी इंटरेस्टिंग एक पोस्ट था। तो मैंने वो पोस्ट अपनी मम्मी को भेजा और मैंने पूछा कि यार मेरा फेस शेप कौन सा है जरा बता दो, ओवल है क्या है राउंड है। तो भाई मम्मियाँ बहुत सैवेज होती हैं, मुझे पता तो था, आज फिर से प्रूव हो गया। तो मुझे बोलती हैं कि अभी तो फिलहाल फेस में बहुत फैट है तो इसलिए राउंड ही लग रहा है। और दो मिनट के लिए मैं कुछ बोल नहीं पाया इतना कॉल्ड आउट मुझे फील हुआ वहां पे। बट हाँ, मेरी भी गलती है, ऐसा सवाल मैं पूछने क्यों गया करके। कोई गल नहीं जी, फिलहाल यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو اولیو 106.3 ایف ایم جیو بنداز.
2: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
3: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर.
2: योर स्पेशल ऑफर?
3: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है. ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ.
2: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है.
3: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है.
2: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए. अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो.
4: हाय, मैं हूँ सारिका. आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3.
5: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.
6: Olive Recharge, Radio Olive 106.3 FM par Jio Bindas.
7: Olive Recharge.
8: This hour is brought to you by
9: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि वेकेशन तो खत्म होने वाला है, मगर वेकेशन के खत्म होने से पहले मैसिव एंजॉयमेंट अभी भी बाकी है। मैं बात कर रहा हूं बैक टू स्कूल के बारे में, जो होने वाला है 27 अगस्त को अबू सिद्रा मॉल में। तो इसके लिए आप भी हिस्सा बन सकते हैं, इस एंजॉयमेंट का हिस्सा बन सकते हैं। उसके लिए करना क्या है, सीधा जाइए हमारे वेबसाइट में विच इज olive.qa, वहां पे रजिस्टर कीजिए। सेलेक्टेड पार्टिसिपेंट्स को जो है कॉल बैक आएगा इस बहुत ही बढ़िया मैसिव एंजॉयमेंट का हिस्सा बनने के लिए। तो इंतजार किस बात का है, अभी के अभी तत्काल प्रभाव से तुरंत से पहले रेडियो ऑलिव की वेबसाइट को चेकआउट कीजिए विच इज olive.qa। उसमें आपको एक फॉर्म मिलेगा, रजिस्टर कीजिए और हिस्सा बनिए इस बहुत ही बढ़िया बैक टू स्कूल इवेंट का। स्टे ट्यून्ड, यह रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम, जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: सब कुछ अनबीटेबल वैल्यू में। तो इस सीजन लुक में भी टॉप अप करो। स्पेक्टेकुलर ऑफर सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए आपके नजदीकी लुलु स्टोर्स में।
1: लगा और हो जा रिचार्ज।
2: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
3: This hour is brought to you by
4: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM. मैं हूं आपका मेजबान सुदेव. और यहां पे काफी अमेजिंग एक बात मुझे पता चली है. तो डेनमार्क के स्कूलिंग सिस्टम में एक ऐसा चीज है कि पूरे टाइम टेबल में एक घंटा जो है वो काइंडनेस के लिए. तो बच्चे जो है बैठेंगे, एक साथ बात करेंगे, अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. इससे टीम वर्क बिल्ड होगा, एम्पैथी बिल्ड होगी, काइंडनेस बढ़ेगा लोगों में. और डेनमार्क ने 1990 से जो है इस चीज को, इस फ्रेमवर्क को अपने करिकुलम में ऐड कर रखा है, अपने टाइम टेबल का हिस्सा बना रखा है. और 6 साल से 16 साल के बच्चों के लिए ये सिस्टम जो है काम करता है. और सोच के देखिए कितनी अमेजिंग बात है ना यार. ये ऐसी ही एक अमेजिंग बात है जापानी स्कूल्स के बारे में जो मैं बताना चाहूंगा थोड़ी देर में. फिलहाल यहाँ पे गाने सुनते हैं, एंजॉय करते हैं और कहते हैं जियो बिंदास.
1: कभी चांदनी फैलाई तो कभी बनी हवा हवाई. बॉलीवुड की फर्स्ट फीमेल सुपरस्टार श्रीदेवी ने जब जब स्क्रीन पर अदा दिखाई बस वाह वाह ही पाई. आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर सुनते हैं रेडियो ऑलिव पर श्रीदेवी स्पेशल सॉन्ग्स.

0: Listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Fresh, fresh on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience. Serve with pride. Danadal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Alkhor.
2: Oh no, phir se school.
3: अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों? जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है. रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश. अब सिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक. वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल. किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है. तो एक्सक्लूसिव एंट्री चाहिए? प्रोसेस बड़ा सिंपल है. अभी जाओ olive.qa पर बैक टू स्कूल फॉर्म फिल करो और अपना फोन अपने पास रखना, क्योंकि हमारी कॉल कभी भी आ सकती है. स्पॉट्स लिमिटेड है तो आज ही रजिस्टर करें olive.qa पर. मिलते हैं अबू सिद्रा मॉल में. वेन्यू पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल. अबू सिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन.
4: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट.
3: क्रिएटिव पार्टनर प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव. फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट स्क्रिबल्स गल्फ ऑन इंस्टाग्राम.
0: Olive Recharge, Radio Olive 106.3 FM par Jio Bindas.
5: Olive Recharge.
6: This hour is brought to you by
1: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे हमने थोड़ी देर पहले डेनमार्क के स्कूल में काइंडनेस सिखाने के बारे में बात की थी। सिमिलरली जापान के स्कूल्स में इनिशियल ईयर्स में ज्यादा पढ़ाई नहीं होती, एग्जाम्स नहीं होते, वो बच्चों को मैनर्स सिखाते हैं, गुड मैनर्स सिखाते हैं कि कैसे बिहेव करना है, क्या करना है करके तौर तरीके सिखाते हैं। और मुझे काफी अच्छा लगा यार, मतलब बहुत ही छोटी उम्र में जब तुम मैनर्स सिखाते हो, पोलाइट होना सिखाते हो, ये लंबी उम्र तक तुम्हारे साथ रहते हैं एट्रीब्यूट्स जो है। उसके साथ साथ जापानी स्कूल्स को क्लीन करने में वहां के स्टूडेंट्स का ही हाथ है। वहां पे स्कूल टाइम के बाद स्टूडेंट्स को ड्यूटी असाइन की जाती है, वो अपने शिफ्ट के हिसाब से, ड्यूटी के हिसाब से स्कूल को क्लीन करने में हेल्प करते हैं, जो बहुत ही ज्यादा बढ़िया बात है, क्योंकि एक सेंस ऑफ ओनरशिप भी रहता है अपने जगह के लिए। इसलिए हमेशा हमने देखा होगा कि वहां के लोग हमेशा चीजों को बहुत ही बढ़िया तरीके से हैंडल करते हैं, अपने वर्क स्पेस को हो, अपने घर को हो, अपने स्कूल को हो। तो ये वैल्यूज बहुत ही छोटी उम्र में इनकलकेट करना बहुत बढ़िया बात है, और यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

एपिक गेम्स, नॉन स्टॉप चैलेंजेस और फुल ऑन मस्ती के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि स्कूल तो खुलने वाले हैं मगर एक बहुत ही बढ़िया पार्टी तो अभी भी बाकी है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम, मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। तो भाई मैं बात कर रहा हूं रेडियो ऑलिव के बैक टू स्कूल बैच के बारे में जो होने वाला है 27 अगस्त को अबू सिद्रा मॉल में। तो इसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करने के लिए सीधा विजिट कीजिए रेडियो ऑलिव की वेबसाइट को, जो है olive.qa। वहां पे आपको एक बैनर दिखेगा बैक टू स्कूल का, उसे क्लिक कीजिए, फॉर्म को फिल कीजिए और सेलेक्टेड पार्टिसिपेंट्स को मौका मिलेगा बैक टू स्कूल बैच का हिस्सा बनने का। तो यही बात बताते हुए हम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: Radio Olive 106.3 FM Gio Bendaz.
1: यार मुझे 10 GB फ्री मिला मेरे हाला रिचार्ज के साथ।
2: क्या कैसे?
1: बस रिचार्ज करो और तुम्हें फ्री डेटा या मिनट्स मिलते हैं। कल मुझे 50 फ्री मिनट्स मिले।
2: रोज मिलता है क्या?
1: हाँ रोज मिलता है।
2: मैं भी अपना हाला नंबर रिचार्ज कर रहा हूँ।
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडू ऐप पर। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
3: मैं हूं अली कपूर। रेडियो ओलिव योर बिंदास।
0: Olive Sono Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे बहुत ही क्यूट खबर मैंने सुनी। तो कैलिफोर्निया के एक 5-स्टार होटल के फ्रंट डोर के डोर हैंडल में एक हमिंग बर्ड ने अपना नेस्ट बनाया। बहुत ही छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा नेट जो एक इंसान के हाथ में फिट हो सकता है। तो होटल के जो स्टाफ है उन्होंने उस नेट को नहीं हटाया, उन्होंने उसे वहीं रखा और डोर को ही लॉक कर दिया और वहां पे बोला कि गेस्ट जो है दूसरा डोर यूज करे क्योंकि यहाँ पे नेचर इज इन प्रोग्रेस करके एक बोर्ड भी लगा दिया। मुझे काफी अच्छा लगा ये न्यूज सुन के। कुछ ऐसी खबरें सुन के लगता है ना कि वाह यार ये बहुत बढ़िया बात हुई है। और यही बात बताते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। गाय के साथ CNG हो या फ्यूल टाइप बसेस 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट। कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर। विजिट कारमेल ग्रुप नाउ।
1: लगा और हो जा रिचार्ज।
0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास।
2: This hour is brought to you by
3: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे एक चीज मैं आपको याद दिलाने के लिए आया हूं, वो यही है कि अगर आपने अभी तक रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया तो जानी सीधा जाइए इंस्टाग्राम पे radioolive.qa सर्च कीजिए और फॉलो कीजिए। उसके साथ साथ आप हमारे कंटेंट को चेकआउट कर सकते हैं, पोस्ट को चेकआउट कर सकते हैं, नए कुछ रील्स भी डाले उसको चेकआउट कर सकते हैं, लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं एंड बहुत सारी डिजिटल कॉन्टेस्ट भी हम अपने पेज पर लेकर आते हैं, तो प्राइजेस जीतने के मौके भी हैं आपके पास। तो यही याद दिलाते हुए हम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

स्टोरी ऑफ द डे, स्टोरी ऑफ द डे, स्टोरी ऑफ द डे। साउथ की छोटी सी श्री अम्मा से लेकर बॉलीवुड की हवा हवाई तक, हिम्मत वाला की धमाकेदार एंट्री, मिस्टर इंडिया वाली अदा, चांदनी का नूर और चालबाज में एक ही पर्दे पर दो अलग जान। पद्मश्री से नवाजी गई, मगर उनका असली अवार्ड था वो प्यार जो हर जनरेशन ने उन्हें दिया। Superstar Sridevi on her birth anniversary.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: स्कूल। अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों? जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है। रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश। अबू सिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक। वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल। किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है। तो एक्सक्लूसिव एंट्री चाहिए? प्रोसेस बड़ा सिंपल है। अभी जाओ olive.qa पर बैक टू स्कूल फॉर्म फिल करो और अपना फोन अपने पास रखना, क्योंकि हमारी कॉल कभी भी आ सकती है। स्पॉट्स लिमिटेड है तो आज ही रजिस्टर करें olive.qa पर। मिलते हैं अबू सिद्रा मॉल में। वेन्यू पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल। अबू सिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन।
2: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट।
1: क्रिएटिव पार्टनर प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव। फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट स्क्रिबल्स गल्फ ऑन इंस्टाग्राम।
3: लगा और हो जा रिचार्ज।
0: ओलिव रिचार्ज, रेडियो ओलिव 106.3 FM पर। जियो बिंदास।
3: ओलिव रिचार्ज।
4: This hour is brought to you by
5: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा।

तो भाई धीरे धीरे टाटा बाबाई गुड बाय करके निकलने का वक्त आ चुका है, क्योंकि 5 बजने वाले हैं, मेरा वक्त यहाँ पे खत्म होने वाला है। मगर कोई गल नहीं जी, कोई गल नहीं, हम आपसे मुलाकात करेंगे, बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे अब सीधा सैटरडे दोपहर को। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने खास लोगों का ख्याल रखिए, हमें जरा दुआओं में याद रखिए, और जाते जाते जाते यही बोलेंगे कि हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: सॉन्ग ऑफ द आवर
1: ये गाना
2: न करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क की मोहब्बत को ही ख्याल दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

0: Pilipinas number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Gio Bindas.
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन. रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है. कॉल 4411133. ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम.

0: 7 gagamale ar. लेकिन अगर सिमरन कौर की बात करूं, सिमरन कौर की 4 घंटे का माल है मैं क्या तबाही बेबी। ये रूम में आपकी तबाही मच रखी है ना, तो वीकेंड पे उसको साफ कर लीजिएगा क्योंकि पूरा हफ्ता टाइम ही नहीं लगता यार। मैं क्या जी सोनियों की दादी की हाल चाल, सत श्री अकाल, सब ठीक ठाक है, बढ़िया। सिमरन कौर आ चुकी है और आ चुका है वीकेंड भी, हैप्पी वीकेंड है जी। यार आज मुझे बड़ा अच्छा लगा, आप लोग जो है ना, जो आप ये जो छोटे छोटे एफर्ट लगाते हो और मेरी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हो, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। दो दिन पहले यू रिमेम्बर मैं पीनट बटर के फोबिया के बारे में बता रही थी और मैं बता रही थी कि मुझे पीनट बटर जो है वो कितना ज्यादा पसंद है। हमारे जो लिसनर हैं इमरान, ओके, उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ा सरप्राइज भेजा जिसमें उन्होंने बहुत सारे पीनट बटर एंड म्यूसली एंड कुछ शुगर फ्री ड्रिंक्स। और क्या होता है कि आप लोग मुझे सुनते हो हर रोज, तो आप लोगों को पता है कि मैं यू नो शुगर फ्री चीजें और हेल्दी चीजें जो है वो प्रेफर करती हूँ और मेरी डाइट में ऐड करती हूँ। और थैंक यू सो मच इमरान, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, मैंने इमरान को कॉल भी किया था और अगर आप मुझे अभी सुन रहे हैं तो अगेन थैंक यू यार। मतलब आप लोग इस तरह की चीजें करते हो, दिल गदगद गदगद गद हो जाता है। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए वीकेंड पे, वीकेंड के टाइम पे आपका माइंड जो है वो गदगद होना चाहिए, काम को छोड़ दीजिए। अब 4 घंटे अपने हैं तो फिर 3311063 पर व्हाट्सएप करके बताइए आपके आज के दिन के बारे में। ठीक हो?
1: कभी चांदनी फैलाई तो कभी बनी हवा हवाई, बॉलीवुड की फर्स्ट फीमेल सुपरस्टार श्रीदेवी ने जब जब स्क्रीन पर अदा दिखाई बस वाह वाह ही पाई। आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर सुनते हैं रेडियो ऑलिव पर श्रीदेवी स्पेशल सॉन्ग्स।

0: गाय के साथ सीएनजी हो या फ्यूल टाइप बसेस, 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर, पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट कारमेल ग्रुप के साथ। अब सफर विदाउट सफर, विजिट कारमेल ग्रुप नाउ।
1: हाय रेडियो ऑलिव 106.3 लिसनर्स, दिस इज रणवीर सिंह, स्टे ट्यून्ड।
2: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।
3: रेडियो ऑलिव नंबर वन।
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के, तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
5: सिमरन के साथ।
6: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
7: लुलु, हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: विशाल मिश्रा, टॉक्सी फिल्म से ये गाना सुन रहे हैं आप। टॉक्सी फिल्म का ट्रेलर मैंने देखा यार, बहुत ज्यादा वायलेंस है यार, बहुत ज्यादा वायलेंस है। मतलब हाँ, आजकल मुझे ऐसी बहुत ज्यादा वायलेंस वाली फिल्म जो है वो देखी नहीं जाती है। अगर आपने ये ट्रेलर देखा है टॉक्सिक का तो आपको कैसा लगा, आप अपनी व्यूज जो है वो मुझे जरूर दे सकते हैं। माय गॉड, सुनियो के दादा की हालचाल, सत श्री अकाल, सिमरन कौर है तोड़े नाल, एंड आज तो वीकेंड है बेबी। जम के होगी लेकिन वो भी थोड़े स्टाइल में।
1: जे मैनू यार ना मिले ते मर जावा।
0: ओ थैंक यू सो मच यार, मैंने आप लोगों के वीकेंड के प्लान भी पूछ लिए हैं। बताओ यार, आप अपना वीकेंड जो है किस तरह से आज स्पेंड करने वाले। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज मुझे अपना पन चाहिए। वो होता है ना कि नो पीपलिंग जोन मेरा आज है, क्योंकि मेरे में पूरे वीक में जो था वो मेरा वीक डे जो था वो बाहर आना जाना लगा रहा, लेकिन ये जो दिन है आज मुझे लगता है कि मैं मेरा पिज्जा और मैं होने वाली हूँ नेटफ्लिक्स के साथ। सो आप लोगों के प्लान आप मुझे बताइए। सो मुझे अदील जी ने पकौड़ों की फोटो भेजी है यार, एकदम मेरे को प्याज वाले पकौड़े लग रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उनका प्लान है कि उन्होंने बस ये पकौड़े खाने स्टार्ट कर दिए, अभी तो शुरुआत है।
2: जी अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम
2: जी। सिमरन आप आ जाएं, कोई मसला नहीं है, इधर अलसद में हूँ, मुझे बताएं, मैं आपके पास ले आता हूँ, लोकेशन भेजें ऑफिस की, मैं ले आता हूँ।
0: अरे नहीं दोस्त, जब तक आप मेरे पास पहुंचोगे आपके पकौड़े ठंडे हो जाएंगे। आप चाय के साथ पकौड़े इंजॉय करो, और सिमरन कौर का शो बंद नहीं होना चाहिए, चलते रहना चाहिए 9 बजे तक। आप लोग भी अपने प्लान बताओ यार, 3311063 पर सिमरन कौर आपके साथ बेबी। जियो विंदास, वापस लौट के एक मैसेज और है वो शेयर करूंगी आपके साथ।
3: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: यार मुझे 10 GB फ्री मिला मेरे हाला रिचार्ज के साथ।
1: क्या कैसे?
0: बस रिचार्ज करो और तुम्हें फ्री डेटा या मिनट्स मिलते हैं। कल मुझे 50 फ्री मिनट्स मिले।
1: रोज मिलता है क्या?
0: हाँ रोज मिलता है।
1: मैं भी अपना हाला नंबर रिचार्ज कर रहा हूँ।
0: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडू ऐप पर। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। गदर की नंबर 1 आरजे सिमरन के साथ।
3: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ।
4: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
5: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop. Just

ਹਾਂਜੀ ਨੱਚ ਵਿਦ ਮੀ ठीक है ओके नच विद मी बट सच्ची बता दूं मुझे डांस आता नहीं है पर मैं पंजाबी हूं मैं रुकती भी नहीं हूं यार ये भी है अपना मैं कह रही सुनियो कितना दी हाल चाल सच्ची अकाल सिमरन कौर है तोड़े ना

0: na re baba na
1: aur jhuma झूम लो जितना मर्जी है, लेकिन ये जो आप मतलब हमको पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने जितने भी लोग बाहर काम करते हैं, आउटसाइड वर्क करते हैं, एक बार वापस से रिमाइंड करवाया कि भाई गर्मी बहुत है और सुबह 10 से लेके दोपहर के 3:30 बजे के बीच में कोई भी आउटडोर वर्क जो है वो नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है और ये 15 सितंबर तक ही है, 1 जून से हर साल जो है ये स्टार्ट हो जाता है, तो एक बार फिर से रिमाइंडर आया है। अब मैंने सोचा आप लोगों को बता देती हूँ इसके बारे में। और यार अपने कितने क्यूट हो यार आप लोग।
2: सिमरन गुड इवनिंग।
1: वेरी गुड इवनिंग।
2: आप जब कहते हो ना कि ठीक हो तो अच्छे बात है, दिल को छू जाती है। इंसान अपनी परेशानियों में घिरा हुआ होता है, कुछ तकलीफ होती है, कोई प्रॉब्लम होता है, आपकी आवाज़ सुनते हैं तो सब कुछ गायब हो जाता है और एक सुकून सा मिलता है माशाल्लाह से। बहुत आप लकी है, आप की आवाज इस तरह से लोग महसूस कर पाते हैं। ओके जी, शुक्रिया।
1: आजमा जी क्या बोलूं यार मैं, यार आप लोग इतने क्यूट हो यार, सवाल पूछना तो बनता है दोस्त। मुझे खुद भी अच्छा लगता है जब कोई मेरा हाल एक बार के बाद दूसरी बार भी पूछे ना कि ठीक हो। तो आई मीन इट यार, जब मैं आप लोगों से पूछती हूँ।

0: listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas.
1: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, गदर की नंबर वन आरजे
2: सिमरन के साथ।
3: Zabardast evening make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
4: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: एवरीवन, मैं हूं अरमान मलिक.
1: नंबर 106.3 FM
2: रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास.
3: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर 1 एशियन रेडियो नेटवर्क.

कर गया होगा वीकेंड के प्लान का। जिन लोगों की आदत होती है यू नो मंच करने की, ये क्रैकर्स खाते हैं, तो मैं आपको बता दूं, मैं इसके बारे में पढ़ रही थी आज, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को भी थोड़ा सा एनलाइटन कर देती हूँ, थोड़ा चन्ना पादनी है, थोड़ी रोशनी पादनी है। सो ये बोलते हैं कि ये जो क्रैकर्स हम खाते हैं ना, सो ये क्रैकर्स आपके टीथ को बहुत ज्यादा खराब करते हैं, आपके दांतों को, क्योंकि जो सलाइवा रहता है ना वो टर्न हो जाता है रिफाइंड शुगर, रिफाइंड स्टार्च में, और ये सिंपल शुगर हो जाती है जो कि आपके दांतों में जाके चिपक जाती है और वो आराम से जो है वो नहीं निकलती है जब तक आप उसको अच्छे से क्लीन ना करो, है ना। सो वो जो है वो आपके दांतों को बहुत ज्यादा खराब करती है, फिर बच्चा कीड़ा वीड़ा लग जाता है, ठीक है, कैविटी हो जाती है। सो इससे अच्छा ये है कि आप चीज खाइए, क्योंकि चीज जो है, मतलब अगर आपको खाना ही है तो आप जो है टीथ को आपके क्लीन कर देता है, नट्स खा सकते हैं, वो चिपकते नहीं है, एंड रॉ वेजिटेबल्स हैं वो भी आप जो है वो खा सकते हैं। सो बेटर चॉइसेस हैं, अगर आप क्रैकर खा रहे हैं तो वो आपकी टीथ हेल्थ को हर्ट कर देते हैं। सो थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि जब वीकेंड आता है तो फिर इंसान को जियो बिंदास। पता नहीं आप लोगों को ऐसे सवाल पूछ के क्या मिलता है कि सिमरन जी आपकी शादी हो गई है क्या? नहीं हुई है दोस्त, करनी भी नहीं है यार, एंजॉय करो ये गाना। पता नहीं क्यों आप ऐसे सवाल लेके

0: सुने हो कि दादी की हलचल सत श्री अकाल सिमरन कौर याव के साथ। आज जो मैं आपको बद्दा वायरल में बताने वाली हूँ ना, बहुत ही क्यूट है यार।
1: रेडियो ऑलिव पर व्हाट द वायरल, क्या बात है, आरजे सिमरन के साथ।
0: सोशल मीडिया पे कभी कभी बहुत बहुत क्यूट क्यूट वीडियो जो है वो आ जाती है। एक तो पैंडा होता ही इतना खूबसूरत है, इतना क्यूट है, ऊपर से ऐसी क्यूट क्यूट हरकतें करता है। सो मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखा जो कि सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें वो पैंडा जो है ना, जहाँ पे हनी भी अपना वो बनाती है, शहद हनी कॉम्ब रहता है ना, सो वो उखाड़ के हनी कॉम्ब खा रहा है और मक्खियां उसको चिपकी हुई है भाई, उसको काट रही है, उसकी आंखें सूजी हुई है, लेकिन वो जो पैंडा है वो हनीकॉम्ब खाने से रुक ही नहीं रहा है, वो हनी खाए जा रहा है, वो जो जिसमें बनाती है ना वो, सो वो खाए जा रहा है भाई, वो उसको फर्क नहीं पड़ रहा कि मक्खियां उसके आसपास उसको काट रही है। भाई हमारा किया हुआ, हमारी जो की हुई मेहनत है, तू ऐसे खा रहा है, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा। वो मतलब इतने मोटी मोटी आंखें सूजी हुई हैं यार। मुझे मेरा बचपन याद आ गया, आई रिमेम्बर यार, एक बार नहीं एक्चुअली 2 से 3 बार हुआ था कि हनी बी ने मक्खी है जेड़ी पंजाबी जब प्रिंट कह देने ठीक है, उसने काट लिया था भाई, क्या आंखें सूज जाती हैं, और मैं कितना रोती थी। और जब आंखें सूजती थी तो ड्रामा ये भी होता था कि बेटा आंखें सूज गई हैं, कल ऑफिस नहीं, कल स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। सो ये भी होता था यार, दर्द उस टाइम पे हो रहा है लेकिन खुशी होती थी भाई, ठीक है यार स्कूल तो मिस हो जाएगा कल। मेमोरी है जब आप छोटे होते थे तो आपको हनी बी ने काट लिया था और एकदम आपका चेहरा वेरा आंखें वांखें सूज गई थी। मेरे साथ बहुत बार हुआ है। सो अगला गाना सुनिए, तरकीब है, एक नंबर, सुनते रहिए रेडियो ऑलिव कोर, कहते रहिए जियो बिंदास एंड हैप्पी वीकेंड है जी। और आपके वीकेंड के क्या प्लान है, साथ साथ आप मुझे वो भी बता सकते हो वही व्हाट्सएप नंबर पर

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: You are listening to Radio Colif 106.3 FM.
2: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
3: हेलो लिसनर्स, मेरा नाम है राजपाल यादव, राजपाल यादव, और आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM, जियो बिंदास।
1: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क। रेडियो ऑलिव
4: नंबर वन। इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के, भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे,
5: आरजे सिमरन के साथ।
6: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
7: लुलु, हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: मौसम को कितने नंबर देने हैं चेक करते हैं। हाई ह्यूमिडिटी एक्सपेक्टेड लिखा हुआ है यार, 37 डिग्री सेल्सियस अभी तक का टेम्परेचर एंड फील्स लाइक 40 डिग्री सेल्सियस। विंड जो है 12 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से चल रही है। ह्यूमिडिटी 64% है और जैसे जैसे रात बढ़ेगी आपको पता है ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। सो आज का मैक्सिमम टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस लेकिन ह्यूमिडिटी की वजह से और ज्यादा गर्मी लगेगी एंड मिनिमम है 34 डिग्री सेल्सियस। 6:23:37 स्टूडियो की घड़ी पे। अगर आपने अभी तक नहीं सोचा है कि आप वीकेंड किस तरह से जो है वो आज मनाने वाले हैं, सेलिब्रेट ही बोलिएगा, सेलिब्रेट करने वाले, तो सिमरन कौर का शो सुनते सुनते प्लान कर लो ना यार, क्योंकि मैं आपको बार बार पोक करते रहूंगी कि कुछ तो करो यार।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के
4: साथ जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ। Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
5: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop. Just

हो, आप लोगों का प्यार ना, मतलब जैसे मुझे मिलता है ना, मेरे दिमाग में धड़कन वाली मैं सुनील शेट्टी बन जाती हूँ कि तुम मुझे भूल जाओ, ये मैं क्या होता है वो, तुम मुझे भूल जाओ मैं ये हो नहीं सकता, और मैं तुम्हें भूल जाऊं ये मैं हो नहीं, गलत कर दिया। आप बताओ राइट डायलॉग क्या है यार। 3311106

0: Olive Bay. Story of the day. Story of the day. साउथ की छोटी सी श्री अम्मा से लेकर बॉलीवुड की हवा हवाई तक, हिम्मत वाला की धमाकेदार एंट्री, मिस्टर इंडिया वाली अदा, चांदनी का नूर और चालबाज में एक ही पर्दे पर दो अलग जान, पद्मश्री से नवाजी गई, मगर उनका असली अवार्ड था वो प्यार जो हर जनरेशन ने उन्हें दिया। रिमेम्बरिंग सुपरस्टार श्रीदेवी ऑन हर बर्थ एनिवर्सरी।
1: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
2: अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्पेक्टाकुलर ऑफर के साथ।
0: लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन की वाइड रेंज ऑफ फॉर्मल वर्कवेयर, स्मार्ट कैजुअल, स्टाइलिश डेनिम्स, स्लीक सूट्स और एलिगेंट ब्लेजर्स के साथ हर आउटफिट में मिलेगा प्रीमियम फैब्रिक का टच और अनमैच्ड डिटेलिंग का फिनिश।
2: अपने वार्डरोब को रीडिफाइन कीजिए और सोफिस्टिकेशन का एक नया अंदाज अपनाइए विद वैन ह्यूसन एंड लुई फिलिप।
0: विजिट लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्टोर्स इन ओल्ड एयरपोर्ट रोड और पाइए स्पेक्टाकुलर offer.
3: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience. Served with pride. Danadal Pahar, the ultimate Katri adventure. Souk Waqif, Alkhol.
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे,
5: आरजे सिमरन के साथ।
6: Zabardast evening, make you drive golden with.
7: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
8: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: धड़कन फिल्म के डायलॉग के बारे में बात कर रहे थे ना, मैं भूल गई थी। हाँ जी,
1: सत श्री अकाल सिमरन जी।
0: सत श्री अकाल,
1: नाम रिंकल है।
0: हाँ जी,
1: वो धड़कन मूवी का डायलॉग था कि तुम मुझे भूल जाओ ये हो नहीं सकता, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये मैं होने नहीं दूंगा।
0: यार आपने भी मुझे लगता गलत हो गलत बोल दे। देखो, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। मैं खुद के लिए हंस ली हूं दोस्त, लेकिन ये था सही डायलॉग।

गाय के साथ सीएनजी हो या फ्यूल टाइप बसेस 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर विजिट कारमेल ग्रुप नाउ।

फिल्म का नाम है ताल, और ताल फिल्म के बारे में बता दी। शाहिद कपूर बहुत छोटे से थे इसमें, जब वो गाना चल रहा था ना कहीं आग लगे लग जावे, उसमें बैकग्राउंड डांसर थे वो, क्योंकि वो शामक दावर से सीख रहे थे तब डांस वगैरह, उसके ट्रूप का पार्ट थे वो। सो या अगर नहीं नोटिस किया तो जब ये नेक्स्ट टाइम गाना देखोगे कहीं आग लगे लग जावे, शाहिद कपूर आपको पीछे नाचते हुए नजर आएंगे। इस अनिल कपूर का जो रोल था वो पहले गोविंदा को, आमिर खान को, दोनों को ऑफर किया गया था, लेकिन दोनों ने समहाउ रिजेक्ट कर दिया। सो अनिल कपूर के पास जब ये रोल आया तो उन्होंने सुभाष घई को बोला कि भाई ये वाला रोल जो आप बोल रहे हो ना, ये कमल हसन सर जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। लेकिन सुभाष घई ने बाद में बोला अनिल कपूर को, देन ही एक्सेप्टेड। फिर और भी बहुत सारी बातें हैं ताल फिल्म के बारे में, जो कि मैं आपको वापस लौट के बताने वाली हूँ, और एक नंबर गाने भी सुनाने वाली हूँ।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas.
1: गाय के साथ सीएनजी हो या फ्यूल टाइप बसेस 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर विजिट कारमेल ग्रुप नाउ
2: सलाम प्रणाम नमस्कार वणकम मैं हूं जैकी श्रॉफ रेडियो 106.3 जियो बिंदास
0: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क रेडियो
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त गदर की नंबर वन आरजे
4: आरजे सिमरन के साथ
5: Zabardast evening. Make your drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
6: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores. Where the world comes to shop. Just

सुनियो की तदिकी हलचल सत श्री अकाल सिमरन गौरे तोड़े नाल 7:22:10 स्टूडियो की घड़ी पे हो चुके हैं और आज हम फताल फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं। सो महिमा चौधरी इस फिल्म में मानसी का कैरेक्टर जो था वो निभाने वाली थी। तो सुभाष घई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था क्योंकि महिमा चौधरी ने उनका रूल जो था वो तोड़ दिया था, क्योंकि उन्होंने सुभाष घई के साथ ही 3 फिल्म्स जो थी वो करनी थी, वो कॉन्ट्रैक्ट जो था वो उन्होंने मुक्ता आर्ट्स के साथ वो खत्म कर दिया था। एंड उसके टाइम पे जब अक्षय खन्ना इस फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तो उनका हेयर लॉस का प्रॉब्लम इतना ज़्यादा था इस फिल्म के दौरान कि सुभाष घई को मीडिया को भी एड्रेस करना पड़ा था इस इशू को लेकर। एंड इसमें जो गाना है इश्क बिना क्या जीना यारो, और शायद आई गेस ताल से ताल मिला भी, आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक फिल्म आने वाली थी शिकार जो कि आई नहीं, ये गाने उसके लिए रिकॉर्ड किए गए थे और ये फिल्म ताल के लिए फिर यूज किए गए। अगर इस फिल्म के बारे में बात करें, इसमें जो कास्ट और क्रू है ना, सबके नाम ए से स्टार्ट होते थे। अनिल कपूर, ऐश्वर्या राय, अक्षय खन्ना, आलोक नाथ, अमरीश पुरी, एआर रहमान, आनंद बख्शी, सो बहुत सारे ए थे इसमें। 7:23:15 स्टूडियो की घड़ी पे वापस लौट के रियलिटी चेक बताएंगे और साथ में खेलेंगे नेम।

0: करिए रेडियो ऑलिव को और कहते रहिए जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: Fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience. Served with pride. Danadal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Alkhol.
2: Oh no, phir se school.
3: अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों? जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है। रेडियो ओलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश। अबू सिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक। वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल। किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है। तो एक्सक्लूसिव एंट्री चाहिए? प्रोसेस बड़ा सिंपल है। अभी जाओ olive.qa पर बैक टू स्कूल फॉर्म फिल करो और अपना फोन अपने पास रखना, क्योंकि हमारी कॉल कभी भी आ सकती है। स्पॉट्स लिमिटेड है तो आज ही रजिस्टर करें olive.qa पर। मिलते हैं अबू सिद्रा मॉल में। वेन्यू पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल। अबू सिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन।
4: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट।
3: क्रिएटिव पार्टनर प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव। फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट स्क्रिबल्स गल्फ ऑन इंस्टाग्राम।
5: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आजे
6: आरजे सिमरन के साथ।
1: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
7: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: ਸੋਹਣਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਆਪ ਕੇ ਸਾਥ। ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਜੀ ਕਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਅਮਲ ਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਤੇ ਹੈਂ, ਬੈਸਟ ਵਾਈਫ ਬੈਸਟ ਪਾਰਟਨਰ ਔਨ ਦਿਸ ਪਲੈਨਟ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਨ ਸ਼ੋਰਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਕਰਤੇ ਹੈਂ ਯਾਰ ਵੋ ਆਪਸੇ। 7:34:12 ਕੀ ਘੜੀ ਪੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈਂ ਔਰ ਅਬ ਟਾਈਮ ਹੈ
1: ਰੇਡੀਓ ਓਲਿਵ ਪਰ ਆਰਜੇ ਸਿਮਰਨ ਕੇ ਸਾਥ।
0: अगर किसी को पहचानना है ना, तो जब आप अपनी बाउंड्री सेट करते हो ना अपनी लाइफ में, आप अपनी खुद की आपकी एक बाउंड्री होती है जिसको आप चाहते हो कि कोई भी क्रॉस ना करे। जब आप अपनी लाइफ में आप बाउंड्री सेट करने लगते हो, तो सामने वाला जो है ना, जो इंसान आपकी बाउंड्री को नहीं समझता है, फिर उसको लगता है कि जब आपने बाउंड्री सेट कर ली तो फिर आप वो आपको कंट्रोल नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो अपने तरीके से आपको चलाना चाह रहा है। तो लाइफ में जो इंसान आपकी बाउंड्री को समझते हैं, जो इंसान ये समझते हैं कि भाई हाँ इसको भी अपने टाइम की ज़रूरत हो सकती है, या फिर अगर उसने किसी चीज़ के लिए मना किया है तो सोच समझ के किया होगा। जब आप किसी को मना करने लग जाते हो उसको, फिर गुस्सा आने लगता है, उसको लगता है भाई ये अब मेरे कंट्रोल में है नहीं है। तो ऐसे लोग अगर आपकी लाइफ में है, अगर वो नहीं भी होंगे ना दोस्त, तो भी चलेगा यार। जो इंसान आपकी हर डिसीजन का रिस्पेक्ट करे, दैट्स इट, वही है लोग। वापस लौट

0: ते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे
1: आरजे सिमरन के साथ।
2: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
3: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

हां जी आपके दोस्त लोग भी सुन लेंगे, आप भी सुन रहे हो यार, और आपके दोस्तों के नाम भी ले दूं, तो आपको एक काम करना होगा, मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सिर्फ और सिर्फ अपना नाम लिख के भेजना होगा। मेरा व्हाट्सएप का नंबर मैं आपको बता देती हूँ, 3311063 जी, 3311063। इस नंबर पे सिर्फ और सिर्फ आपने अपना नाम लिख के भेजना है, मैं आपके मैसेजेस का इंतजार कर रही हूँ। राजीव जी थैंक यू सो मच, इमरान अशफाक जी थैंक यू सो मच, वाजिद जी थैंक यू सो मच, अमन जी थैंक यू सो मच, मोहम्मद वसीफ जी एंड अफीफ जी, बुशरा जी, तरन्नुम जी, दिल भट्ट जी, जीशान जी, यूसुफ जी, रिंकल जी, मुकेश जी, शाहिद जी, मून थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, खेमराज जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, पाली जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, राजीव जी ऑलरेडी मैं आपका नाम जो है वो बोल चुकी हूँ, इमरान जी थैंक यू सो मच, कुलदीप दिवाकर जी थैंक यू सो मच, महबूब जट जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, तीरथ प्रसाद जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, कामरान जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, हारिस जी थैंक यू सो मच, एनू जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। क्विकली दोस्तों नाम लिख के भेजो, फिर अगला गाना शुरू हो जाएगा, फिर आप लिखते बैठोगे नाम 3311063 पर। बसित जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, रीमा जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, हारून जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। क्विकली दोस्त फटाफट से लिख के भेजो, इमरान जी, इमरान नहीं नहीं वो दूसरे इमरान है, आप इमराना हो यार, क्या बात कर रहे हो यार, ठीक है। और सुमन प्रधान जी, बीर कुमारी जी थैंक यू सो मच, सैयद अशफाक जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, तोफियाल अहमद जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, जिशान जी, आसमा जी, विनायक जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, सुमन प्रधान, बीर कुमारी जी थैंक यू सो मच, सरमद लारिक जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, एंड देन नगेंद्र जी थैंक यू सो मच, एंड दैट्स इट फॉर नाउ, अब्दुल्ला अहमद, मोहम्मद यूसुफ खान, एंड दैट्स इट फॉर नाउ, जिन जिन लोगों के मैंने नाम ले लिया बेटा आप थैंक यू लिखो और फेवरेट इमोजी बना लो।

0: पे मैच हुआ प्रोफाइल। बायो भी थोड़ा हटके था एंड रेडियस विद इन अ माइल।
1: 52 राइट स्वाइप्स के बाद ये करिश्मा हुआ।
2: आई वाज टोटली वर्थ इट।
1: जिंदगी बदलने आई मेरी जिंदगी में मुस्कान दुआ।

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार।

0: सब कुछ अनबीटेबल वैल्यू में। तो इस सीजन लुक में भी टॉप अप करो। स्पेक्टेकुलर ऑफर सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए आपके नजदीकी लुलू स्टोर्स में।
1: हेलो नमस्कार, मम्मी मैं हूँ चंकी पांडे और आप सुन रहे हो मुझे रेडियो ओलिव

0: बैक पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, गदर की नंबर वन आरजे
1: आरजे सिमरन के साथ।
2: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
3: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas.
1: नमस्ते बहन और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागिन।

0: सतरीकाल सिमरन कौर थोड़े नाल आपके ये छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका समर वेकेशन खत्म होने वाला है लेकिन फन अभी भी बाकी है क्योंकि रेडियो वाले ने अभी बोला नहीं है ओके डाडा बाय बाय आप अब स्कूल में जा सकते हैं नहीं उससे पहले हम करेंगे बैक टू स्कूल बैश और ये होने वाला है अबू सिद्रा मॉल में। आपको पता है कि रेडियो वाले हर बार कुछ ना कुछ जो है वो बैक टू स्कूल के लिए बच्चों के लिए लेकर आता है तो ये इस बार सेलिब्रेशन जो है वो अबू सिद्रा मॉल में 27 अगस्त को होने वाला है। जी हां 27 अगस्त शाम को 3 से लेके शाम के 7 बजे तक ये होने वाला है जिसमें हम आपके बच्चों के साथ बहुत सारी गेम्स खेलेंगे फन करेंगे एंड बड़ा मजा आने वाला है आपके बच्चों को। अपने बच्चों को आप हमारे पास छोड़ दीजिएगा हम संभाल लेंगे उनको ठीक है। बट उससे पहले आपको क्या करना होगा रजिस्टर करवाना होगा बैक टू स्कूल के लिए जिसके लिए olive.qa ये हमारी वेबसाइट है ना olive.qa पे जाकर लिमिटेड स्पॉट्स हैं तो जाके वो फिल कर दीजिएगा फिर इस तरह से आप खुद को अपने बच्चों को रजिस्टर करवा पाएंगे और फिर फन करेंगे और वहां पे क्या क्या करेंगे बताएंगे यार। अभी तो आप ये काम करो पहले olive.qa पे जाके फॉर्म फिल कर लो। क्या कहा कह दो कोई दिक्कत नहीं है।
1: गलत मेरी बातें
0: मैं सारी गलत बातें करती हूँ आप खुश रहो यार।
2: Venue partner, Abu Sidra Mall, where convenience meets choice and community meets style. Abu Sidra Mall, a complete family destination.
3: Gifting partner, Daiso Japan. You name it, we have it.
2: Creative partner, Planet Scribbles Worldwide, where every child's imagination comes alive. For more details, follow Planet Scribbles Gulf on Instagram.
4: Awesome. Radio Olive par aane wala gana cool song of the hour
5: kya baat hai sir kya par ye baat hai

बस चक्को फिर अगला गाना

0: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
1: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे
2: आरजे सिमरन के साथ।
3: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
4: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

आपको बड़े खुशी हृदय से ये सूचित किया जाता है कि आपका और हमारा वीकेंड जो है वो अब चालू हो रहा है, क्योंकि मैं आपको छोड़ रही हूँ अब, मतलब अब मैं आपको खुली छुट्टी दे रही हूँ कि जाके एंजॉय करो यार। क्योंकि जब तक मेरा शो चल रहा होता है तो देखो यार साथ में तो रहना होता है, आप मुझे इग्नोर तो नहीं कर सकते और टेंशन पूरी चाहिए रहती है चार घंटे की। सिमरन कौर आपके साथ है, जबरदस्त इवनिंग चल रहा था। अब सिमरन कौर की ऐसे गलती माने का टाइम आ चुका है, लेकिन इस वादे के साथ कि सैटरडे को होती है आपसे मुलाकात शाम को 5 बजे, इंडियन इंडिपेंडेंस डे होगा। लेकिन कल अगेन मैं बोलना चाहूंगी हमारे पाकिस्तानी लिसनर्स को आजादी मुबारक हो, जश्न आजादी आप लोगों को एडवांस में मुबारक हो, खुश रहो यार, ठीक है। और जब आप कल जाएंगे तो क्या कहते हैं फ्लैग होस्टिंग के लिए जाएंगे तो रेडियो और एक को टैग करना मत भूलिएगा, हम भी देखेंगे कि अंदर का नजारा जो था वो कैसा था। और खाते भी दरवाज करते रहो, चेहरे पे वाली स्माइल रखो, किसी का दिल मत दुखाना, बी नाइस टू एवरीवन यार, गुड नाइट, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव यू 100 किलो।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। गाय के साथ CNG हो या फ्यूल टाइप बसेस 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर विजिट कारमेल ग्रुप नाउ
1: डॉक्टर ऑन एयर ब्रॉट टू यू बाय नसीम हेल्थकेयर।
2: Hi, I'm Dr. Sara Ali from Nasim Medical Center Al Khor. Do you know the best time to take different types of vitamins? Let's divide into two groups. First group, fat-soluble vitamin. This includes vitamin D, A, and E. It's better if you take it with fatty meal for better absorption. Second group, it's water-soluble vitamin, vitamin C and B12. Better if you take it first thing in the morning with plenty of water for better absorption.
1: Dr. Onair, brought to you by Nasim Healthcare.

0: Club Olive. Club on Radio 6.3 FM. अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्पेक्टाकुलर ऑफर के साथ।
1: लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन की वाइड रेंज ऑफ फॉर्मल वर्कवेयर, स्मार्ट कैजुअल, स्टाइलिश डेनिम, स्लीक सूट्स और एलिगेंट ब्लेजर्स के साथ हर आउटफिट में मिलेगा प्रीमियम फैब्रिक का टच और अनमैच डिटेलिंग का फिनिश।
0: अपने वार्डरोब को रिडिफाइन कीजिए और सोफिस्टिकेशन का एक नया अंदाज अपनाइए विद वैन ह्यूसन एंड लुई फिलिप।
1: विजिट लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्टोर्स इन ओल्ड एयरपोर्ट रोड और पाइए स्पेक्टाकुलर offer.
0: Radio Olive Fame. Club Olive. Club on Radio 6.3 FM.

106.3 FM. You're listening to Club Olive.

0: फिर से स्कूल। अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों? जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है। रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश। अबू सिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक। वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल। किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है। तो एक्सक्लूसिव एंट्री चाहिए? प्रोसेस बड़ा सिंपल है। अभी जाओ olive.qa पर बैक टू स्कूल फॉर्म फिल करो और अपना फोन अपने पास रखना, क्योंकि हमारी कॉल कभी भी आ सकती है। स्पॉट्स लिमिटेड है तो आज ही रजिस्टर करें olive.qa पर। मिलते हैं अबू सिद्रा मॉल में। वेन्यू पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल। अबू सिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन।
1: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट।
0: क्रिएटिव पार्टनर प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव। फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट स्क्रिबल्स गल्फ ऑन इंस्टाग्राम।
2: पिज्जा पार्टनर पापा जॉन्स, ऑर्डर अर्न रिपीट विद पापा रिवॉर्ड्स। डाउनलोड पापा जॉन्स ऐप एंड एंजॉय मोर rewards.

0: Pay. Club Olive. Club Olive Radio.
1: 6.3 FM.

0: Radio Olive 106.3 FM. You're listening to Club Olive.
1: Club Olive. 106.3 FM.

0: Radioalef. Radio Alef.
1: This is Club Ole.
0: Jag bindas. Jag bindas.

0: भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ओलिव जियो बिंदास
1: आरजे सिमरन के साथ
2: रेडियो ओलिव 106.3 FM यू आर लिसनिंग टू क्लब ओलिव.

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम
3: रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम यू आर लिसनिंग टू क्लब

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम बिंदास।
1: ये राजा बोहिमिया कुड़ी कैंडी
2: कुड़ी कैंडी
1: सुखी म्यूजिकल डॉक्टर्स।

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

0: चांदनी रातें।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।